साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: हेलो पापा।
2: कहाँ पर हो?
1: पापा मैं गंगा घाट आया था।
2: बेटा अगर तुम अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के नाम के साथ चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद, हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए।

0: करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा, और हर सुबह कहो आज फिर से मैं खुद को साबित करूंगा या करूंगी। देखिए हम ना खुद ही लापरवाह हो जाते हैं, हम खुद ही मोबाइल खोलते हैं कुछ टाइम देखने के लिए या कुछ इंपोर्टेंट चीज देखने के लिए और वीडियोस में लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया। हम ही लापरवाह हैं। अगर आपको कामयाबी हासिल चाहिए, आपको कामयाबी आपके पलड़े में चाहिए, आपके घर में कामयाबी चाहिए, तब याद रखिए उसके लिए पेमेंट आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को जलना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। देखिए सीधी सी बात है, ख्वाब आपका है, सपना आपका है, तो डेडिकेशन आपका होगा, मेहनत आपकी होगी। यकीन मानिए अगर कोई विचार आपके मन में आया है ना, तो उसका अस्तित्व इस ही संसार में मिलेगा, परंतु आपको खोजना पड़ेगा। ये यात्रा आप ही को तय करनी पड़ेगी। अकेले परेशान होना भी पड़ सकता है, अकेले रोना भी पड़ सकता है, अकेले दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है ये भी लगे कि कोई आपका सपोर्ट नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाता, कोई मैसेज का जवाब नहीं देता, कोई पैसे नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। पहले खुद अपनी मदद हमें करनी होगी, तभी ये दुनिया हमारे पीछे आएगी। कमजोर का साथ कोई नहीं देता, कमजोर सिर्फ हार जाते हैं, और हारने वाले के साथ में कोई नहीं खड़ा होता। आपको जीतना है और इसकी शुरुआत आप ही को करनी होगी, खुद से करनी होगी। अपने मन पर हाथ रखे, अपने दिल के ऊपर, और बोलिए कि मैं फिर से लड़ूंगा या लड़ूंगी। एक बार फिर से शुरुआत करूं,

भगवान मौके नहीं भेजते, संकेत भेजते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान संकेत दे रहे हैं आपको बार बार। कभी मेरी आवाज आपके कान में पड़ जाएगी, पढ़ लेंगे पेपर में, मैगजीन में, सड़क किनारे चलते हुए कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाएगी मोबाइल में। भगवान संकेत भेजते हैं, आपको पकड़ना है, जिम्मेदारी आपकी है, सपने आपके हैं, जीवन आपका है, आप ही का तो पकड़ना है। देखिए, हारना नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। दूसरों की कामयाबी देखता है हर इंसान, पर उसका स्ट्रगल नहीं देखता। कि रात भर नींद भी नहीं आती, इतना स्ट्रेस होता है लोगों को। वो सुबह जल्दी उठकर लग जाते हैं, रात को देर तक भी वही लगे रहते हैं, फिर भी हमको लगता है कि उनको तो सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। ऐसे ही इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता, यही सच है। कोई करोड़पति बना ही नहीं बिना मेहनत के, एक दिखा दीजिए और जिसको रातों रात लॉटरी लगी थी वैसे ही चली भी जाती है। आपको भी पता है बात, मैनेज करना भी तो आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, फैमिली भी मैनेज करनी पड़ती है। तो अगर आपने मैनेजमेंट नहीं सीखा, आपके पास सफलता आ भी गई तब भी आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। हमको लायक बनना पड़ता है, तो लायक बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। ये सारी नीतियां हमको यही तो सिखा रही हैं कि लायक बनो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव तुमसे वो करा देगा जो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य। हम देखिए, अब यहाँ कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पर महाभारत चल रही है, हमको तरकश से कोई तीर निकालना है। ये जिंदगी ही एक महाभारत है, हमारे तरकश में हमारा टैलेंट है। बार बार, असंख्य बार प्रयास करना पड़ेगा, यही तरकश है, यही हमारा तीर है, यही हमारा रामबाण है। हमारी मेहनत और हमारा डेडिकेशन, हमारा लगातार प्रयास करना ही हमारे रामबाण है। जिसका निशाने पर लगेगा फिर वो चमकेगा, फिर उसके पीछे दुनिया दौड़ेगी, नहीं तो किसी अंधेरे में खो जाएंगे। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से सारी सुख सारी सुविधाएं एक साइड रख दो। जब तक के अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाऊं,

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है।
0: सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम है आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

कभी हारने का मन करे तो याद रखना, शुरुआत भी आसान नहीं थी। हर सुबह कहो, आज फिर से मैं खुद को साबित कर दूंगा। भगवान ने आपको एक और ऑप्शन दिया है, संकेत भेजा है, उसे पहचानो, आगे बढ़ो। लोग पूछते रहेंगे, इतना सब झेलकर मुस्कुराते कैसे हो? तो जवाब दे देना, क्योंकि मैं गिरकर भी खुद को उठाना जानता हूं। सफलता उन पर नहीं आती जो इंतजार करते रहते हैं, बल्कि उन पर आती है जो तैयारी करते हैं। तब जब कोई देख नहीं रहा, तब जब वो असफल है, तैयारी तभी करनी होती है जीत के लिए। जो खुद की आग में जलना सीख जाता है, वो किसी सूरज से नहीं डरता, किसी तपिश से वो डरता ही नहीं। आज का दिन आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, तुम भी वो सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। इसीलिए आसान हो या ना हो, आपको लगे रहना है।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दुनिया से लड़ना सीखिए। यहाँ पर ऐसा एक भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसने खुद अपनी जंग को अपने बलबूते ना लड़ा हो। जब भी किसी कामयाब आदमी से बात करता हूँ तो एक ही बात पता चलती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी बहुत आसान थी। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े लोगों को ना, जो करोड़पति लोग होते हैं, अरबोंपति लोग होते हैं या जो कामयाब होते हैं, हम कहते हैं कि उनकी जिंदगी तो बड़ी आसान है। किसी की जिंदगी आसान नहीं होती दोस्तों। अगर कोई बड़ी कुर्सी पर, बड़े पद पर बैठा है, उसको भी दिन रात लड़ना ही पड़ता है। दूसरों की कामयाबी को देखकर खुद को जज मत कीजिए। दूसरों की मेहनत देखेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। बस।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ वास्तु कृष्ण, और थक जाओ तो आराम कर लेना, लेकिन छोड़ना मत। हम सबके सपने होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको लाइफ में मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कई बार क्या स्ट्रगल बहुत लंबा खींच जाता है, हमको सक्सेस नहीं मिल पाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्या हो गया है ऐसा सोचते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है ऐसा भी सोच लेते हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप थक जाओ, हैरान परेशान हो जाओ, थोड़ा रुक कर आराम कर लेना, फिर चल देना। हार नहीं माननी है दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप हजारों बार भी ट्राई कर चुके हैं तो एक बार फिर से करो, क्योंकि किस्मत लिखनी पड़ती है। भरोसे मत बैठो कि ऊपर वाले ने किसी किताब में आपके नाम से कोई चैप्टर बना रखा है, जी नहीं, आपको अपना चैप्टर खुद लिखना होगा, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो कहिए, अपने सपने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं आप? और कीमत बस आपकी मेहनत, लगन और लगातार प्रयास।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: सुधारते आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है। अब आप सुनेंगे राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति के ऊपर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

राष्ट्र अनुभूति पुस्तक उन समस्त क्रांतिकारियों की पावन स्मृति को समर्पित है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुभारती आजादी रेडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, भारत कभी विश्व गुरु कहलाता ही नहीं था, बल्कि वो था भी। भारत ने ही विश्व को तक्षशिला नाम से विश्वविद्यालय दिया, नालंदा विश्वविद्यालय दिया। केवल ये ही नहीं, भारत के वनों में स्थापित गुरुकुल विज्ञान और आध्यात्म की महानतम प्रयोगशालाएं बने। वहां से उदित आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक सूत्रों ने मानवीय सभ्यता को गति प्रदान की। आज हम विज्ञान और तकनीक को जिस शिखर पर देख रहे हैं, उसका आधार भारत के ही महान ज्ञानवत और तपोनिष्ठ मनीषियों ने रखा था। यहाँ के ऋषियों ने ही विश्व को एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया।

प्रेम और शांति का भी संदेश भारत ने ही दिया। दूसरी ओर भारत एक समय विश्व की सबसे सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी। आज आप बड़े बड़े नेताओं के उद्बोधन में सुनते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। हम भारत में रहते हैं, लेकिन एक भारत हमारे भीतर भी रहता है। यदि हम उसको जागृत करने में सफल हो जाते हैं तो तय है कि हमारा प्रिय देश विश्व में शीर्ष पर होगा और पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा।

ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। इसका आधार है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक, जिसके रचयिता, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी।

0: जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत ही खास है, राष्ट्र चेतना, एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कुछ नए रास्ते, नए आयाम दिखाएगी, सुनाएगी। और ये कार्यक्रम का जो बेस है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की लिखी किताब राष्ट्र की अनुभूति के ऊपर ये कार्यक्रम बेस है। इसी बारे में आज के पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए हमने इनवाइट किया है आदरणीय SK अरोरा जी को। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण।
0: सर, आपने भी ये किताब पढ़ी, पहले मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप इस किताब के बारे में और इसके जो लेखक हैं आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
1: कृष्ण, ऐसा है, डॉक्टर अतुल कृष्ण के बारे में तो कुछ भी बोलना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। वो एक महान व्यक्तित्व हैं
0: जी,
1: और सब लोग उनको जानते हैं, उनकी कार्यशैली से और उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से सब परिचित हैं
0: जी।
1: मैं चार लाइनों में उनको, क्योंकि कवि हूँ तो
0: जी,
1: चार लाइनों में उनके बारे में बोलना चाहूंगा। नव चेतना के गीत गाता फिर रहा, नव चेतना के गीत गाता फिर रहा, सोए हुओं को वह जगाता फिर रहा। तंद्रा किसी की टूट जाए इस तरह ही, तंद्रा किसी की टूट जाए इस तरह ही, वह हिम में चिंगारी लगाता फिर रहा।
0: क्या बात,
1: वो बर्फ में चिंगारी लगा रहे
0: जी,
1: कहीं से तो कोई जाग जाए
0: जी।
1: और इस तरह का एक नहीं, सैकड़ों अभियान है उनके। मैं जब से उनसे परिचित हूँ, जब से उनको जानता हूँ
0: जी,
1: तो वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व है अपने आप में। लोग आजकल फॉलो का जमाना है, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनको रियल लाइफ में फॉलो करना चाहिए, कुछ को रियल लाइफ में फॉलो करते हैं आप, कुछ को रियल लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो जितने भी हमारी जो नई पीढ़ी है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा
0: जी
1: कि वो उसको फॉलो करें, जो दिखता है बहुत अच्छा चमकता है, वो सब ठीक है
0: जी।
1: कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम दिखते हैं, कम चमकते हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। असली फॉलोइंग वही होती है
0: जी।
1: तो डॉक्टर अतुल कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है, अगर किसी ने रियल लाइफ में उनको फॉलो कर लिया तो मुझे नहीं लगता उसके जीवन में किसी और चीज की कोई कमी रह जाएगी।
0: बिल्कुल सही।
1: दूसरी बात यह है कि ये जो पुस्तक है जिसके विषय में आपने बात की, राष्ट्र अनुभूति
0: जी,
1: जब मैं इसे पढ़ने लगा तो मुझे शुरू में लगा कि जैसे आम पुस्तकें होती हैं उसमें कुछ कुछ एक एक चीज के बारे में लिखा होता है
0: जी,
1: तो नॉर्मली होता क्या है कि आप 4-6 लाइनें 10 लाइनें पढ़ते हैं, फिर उसको एक उसमें पेपर लगाया, कहीं फ्लैग लगाया और उसको छोड़ दिया कि बाकी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस पुस्तक की विशिष्टता ये है कि जब आप इसका पहला पेज खोलेंगे तो फिर आखिरी पेज तक जाएंगे।
0: बिल्कुल सर,
1: आप इसे रोक नहीं सकते बीच में। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ पे आपके हृदय का स्पंदन कम हो जाए
0: जी,
1: जहाँ पे आपकी मानसिक चेतना में कमी आ जाए, आपको नींद आ जाए पढ़ते पढ़ते, जो अक्सर होता है किताबों में
0: जी,
1: है ना। और खास करके जो इस तरह की बुक्स होती हैं, जो ज्ञान देती हैं, जो लोगों को उनके कर्तव्य के बोध कराती हैं या उनके व्यक्तित्व के डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो उसमें बोरियत होना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल थोड़ा इस तरफ ये बोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं आज की डेट में
0: जी।
1: पर इस पुस्तक की यह विशिष्टता है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, एक बार अगर आप शुरू कर दें
0: जी,
1: तो आप छोड़ नहीं सकते, भले इसमें महीनों के नाम हो जो हमारे हिंदी महीने हैं, लास्ट में लिखा है ना पौष माघ चैत्र बैसाख वाला जो एक वो चार्ट बना हुआ है,
0: वो बहुत अच्छा है सर,
1: क्या गजब की चीज है। मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें, और हर टॉपिक अपने आप में अद्वितीय है, चाहे वो सिविक सेंस का है, चाहे वो पर्यावरण रक्षण का है
0: जी,
1: या वो ट्रांसपोर्ट के बारे में है,
0: या बच्चों को संस्कार वाला
1: के बारे में है, या मैत्री के बारे में आप पढ़िए, मतलब तो वो थोड़ी सी लाइन है
0: जी,
1: मुदिता के बारे में थोड़ी सी लाइन है वो। लेकिन मैं अगर इसको नटशेल में समेट दूं सारी किताब को, तो ये ज्ञान गीता है
0: जी,
1: कोई पुस्तक नहीं, ये ज्ञान गीता है।
0: सर जब मैंने भी इसको पढ़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं फिर पूरा पढ़ते हैं। जैसे आजकल वेब सीरीज का जमाना है तो एक बिंज वॉच एक होता है कि 10 एपिसोड 20 एपिसोड की कोई वेब सीरीज आती है तो जब कोई पहला देखना शुरू करता है तो उसे बिंज वॉच बोलते हैं कि एक ही बार में पूरी देखेंगे, पूरी रात लग जाती है। तो ये बिंज रीड हुआ ना, एक बार में पढ़ना शुरू किया तो लास्ट तक पढ़ने का मन करता है। और लेखन शैली भी कुछ इस तरह की होती है कि वो हमसे सामने बैठकर बात करें, सब फीलिंग
1: जुड़ा हुआ है कोई।
0: जी जी जी। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस किताब के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, आपने आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के बारे में बताया। अब बात इस किताब की अगर की जाए, राष्ट्र की अनुभूति, सर जब मैंने इस किताब को खुद पढ़ा भी तो कि अगर बचपन में किसी बच्चे को ये किताब पूरी पढ़ा दी जाए, समझा दी जाए तो सारे संस्कार इसमें समाहित है।
1: सारे समाहित।
0: आपका क्या कहना है सर इस विषय में?
1: बिल्कुल 100%।
0: आज के जमाने में सिर्फ दिखावे की देशभक्ति रह गई है या दिखावे का ही संस्कार भी रह गया है या दिखावे का ही हमारा धर्म या सनातन, उसके तीन उदाहरण मैं दूंगा फिर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। सर जब कोई स्पेशल डे आता है 15 अगस्त 26 जनवरी या कुछ आता है तो सब अपने स्टेटस या स्टोरी में लगाते हैं, झंडा वगैरह सब देशभक्ति लगा देते हैं। और जब सनातन से जुड़ा कोई त्योहार आता है, देवी की पूजा वगैरह होती है, सब करते हैं और उसके बाद मंदिर देवी की तस्वीरें या भगवान के सब कुछ उठाकर नदी नालों में फेंकाते हैं। और तीसरा होता है माता पिता, ये जो वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम है वहां पर भी किसी के तो माता पिता है ही। तो यानी ये जो हो रहा है सर, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें, क्यों हो रहा है सर ऐसा? जब सबने संस्कार दिए हैं तो बच्चे फिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं?
1: देखिए ऐसा है, एक सबसे बड़ी हमारे साथ दिक्कत क्या है
0: जी,
1: कि पीछे देख आगे चल का एक सिस्टम होता है लाइफ, है ना? आप पीछे देखते हैं आपके पूर्वज क्या करते रहे हैं, आपके इतिहास क्या है, आपका क्या चीजें रही हैं
0: जी
1: आपके बारे में, तो उससे आपका आगे का जीवन चलता है। इवन नौकरी में भी ये कहा जाता है, कोई पूछ लेता है कि जी मुझे ये काम कैसे करना है, तो पीछे देख आगे चल, पीछे की एंट्री कैसी है उसको देख के चलो
0: जी।
1: तो ये एक नॉर्मल सिद्धांत है।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और हमारा ये खासम खास कार्यक्रम है स्टूडियो में। आज के इस खास एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है आदरणीय SK अरोरा सर को। सर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जिस बुक के बारे में सर हम चर्चा करते हैं, राष्ट्र अनुभूति और राष्ट्र चेतना, ये कार्यक्रम है। डॉक्टर अतुल कृष्ण सर लिखते हैं चरित्र के बारे में। चरित्र क्या है? सद्विचारों और सत्कर्मों का संगम ही चरित्र कहलाता है।
1: बिल्कुल।
0: मैं चाहता हूं कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, जरा आप भी इस पर थोड़ी रोशनी डालें सर।
1: देखिए ऐसा है, इस बात के लिए साधुवाद है डॉक्टर साहब का कि उन्होंने दो शब्दों में सारी की सारी व्याख्या कर दी
0: जी।
1: इस किताब की ब्यूटी ये है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं फैलाया उन्होंने। दो शब्द है, उनमें ही चार लाइनों में सारी व्याख्या कर दी चरित्र की। ये है क्वालिटी ऑफ थॉट कि आपको समझने में देर ना लगे, उनको समझाने में देर ना लगे, पिन पॉइंट
0: जी
1: जिसको बोलते हैं बात। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है
0: जी,
1: क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से हैं। जैसे एक होता है हमारा व्यक्तिगत चरित्र
0: जी,
1: एक होता है राष्ट्रीय चरित्र
0: जी।
1: मेन अगर मैं इसको बांट दूं तो मोटे हिस्सों
0: जी,
1: तो एक व्यक्तिगत चरित्र है, एक मेरा अपना सिस्टम है, मैं क्या सोचता हूँ क्या करता हूँ,
0: ठीक
1: तो वही है
0: जी।
1: और एक राष्ट्रीय चरित्र है कि मैं राष्ट्र की बात अगर कर रहा हूँ तो मेरा क्या चरित्र है, मैं राष्ट्र को किस दृष्टि से देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बात घूम फिर के वही है
0: जी
1: कि मैं देखता कैसे हूँ और उस देखे हुए को मैं अपने कार्यों में परिलक्षित कैसे होने देता हूँ, उसे परिवर्तित कैसे होने देता हूँ,
0: ठीक
1: वो चीज है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सा वो आता है कि अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, तो दो तरह की होती है, एक अटेंडेड अवेयरनेस एक अनअटेंडेड अवेयरनेस। जिस चीज में आप अटेंडेड अवेयरनेस में होते हैं आप बहुत कॉशियस होते हैं उसके बारे में, मतलब कहने का जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जहां आपका मैं जुड़ा हूं, अपनत्व जुड़ा है, वहां पे आपको सब कुछ। लेकिन उसको, वो जो अपनत्व जुड़ा है, अगर हम उसका फैलाव कर दें थोड़ा सा, कोई भी जो पौधा उगता है वो बीज वो पहले हुआ, चार पत्ते आए, फिर छह, फिर दस, फिर बारह, फिर ब्रांचेस, फिर वो एक विशाल वृक्ष में कन्वर्टेड हो गया और बहुत सारे लोगों को छाया और उसने रेजिडेंस देना प्रोवाइड कर दिया, फल फूल देना शुरू कर दिया। नदियों का विस्तार भी इसी तरह से है, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो एक सीधा सीधा चरित्र का आईना है हमारे लिए कि आप क्या सोच रहे हैं उसको आप आगे परिलक्षित कैसे कर रहे हैं, आप बता कैसे रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए। आपने सोचा कि सब बहुत अच्छा हो, मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे सब रास्ता दे दें, मेरे लिए सब ऐसा करें, मेरे लिए ऐसा करें, मेरे को ये मिलना चाहिए, मुझे नौकरी टाइम पे मिल जाए, पढ़ाई अच्छी मिल जाए, वो सब कुछ मिल जाए, ठीक है। मतलब मी सिंड्रोम जिसको मैं बोलता हूँ, मेरे आसपास बस
0: सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए जी,
1: ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप मुझसे कनेक्टेड है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ
0: जी,
1: ऐसा संभव नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ ना करूं, सब कोई मेरे लिए सब कुछ करे, मैं राष्ट्र के हित में कुछ ना सोचूं, राष्ट्र मेरे हित में सब कुछ सोचता रहे, मैं प्रकृति के हित में कुछ ना सोचूं, प्रकृति मेरे लिए सब कुछ सोचती रहे, मैं समाज के लिए कुछ ना सोचूं, समाज मेरे लिए सब कुछ सोचता रहे।
0: वो ये बिल्कुल वही बात है ना सर कि भगत सिंह दूसरे के घर में होना चाहिए, मेरे बच्चे अपना काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चरित्र एक इतनी बड़ी एक चीज है कि भाई आप अच्छा सोचिए
0: जी सर,
1: और अच्छा करिए बस, इससे ज्यादा तो कुछ कहा ही नहीं गया।
0: सर हमारे परिवारों में बच्चों को भी चरित्र निर्माण किया जाता है या संस्कार दिए जाते हैं, जो भी माता पिता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ज्यादातर मोबाइल देखते हैं आजकल, वैसे संस्कार तो मोबाइलों से ही ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी अगर कोई नई पीढ़ी के माता पिता आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को कम से कम वो चार बातें तो जरूर सिखाइए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए?
1: देखिए सबसे पहली चीज बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं इस संसार में हूं, है ना, तो जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे आसपास है, वो सब मेरा है। अपनत्व का भाव आपको जगाना पड़ेगा, खाली वही उसका नहीं है जो उसके हाथ में है, जो किसी और के हाथ में है वो भी एक तरह से उसी का ही है, तो तभी उसके मन में एक अपनत्व की भावना जागना जैसे पहले बोलते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग,
0: हाँ जी,
1: वो चीजें सिखाई जाती थी
0: जी।
1: फिर ये सिखाया जाता था कि इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। पहले स्कूल में ये सब चीजें बताई जाती थी, अब नहीं बताई जाती है, आजकल कम बताते हैं
0: जी।
1: तो वो चीजें जो है अगर हम घर में, इसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना नहीं, सिंपल हम घर में व्यवस्था ही ऐसी बनाएं कि बच्चे को बताने से ज्यादा दिखाएं, उसे अपने साथ बिठा के खाना खिलाइए, उसको भाई बहन है तो उसके साथ शेयर करने की आदत डालिए, कुछ ऐसा उसको दीजिए। हम टिफिन उसी को देते हैं कि भाई ये तू ही खाना और किसी को मत देना। बच्चा स्कूल जाता है तो हम ये सोचते हैं बस यही पहलवान हो जाए, यही सब कुछ खा ले। लेकिन अगर हम उसको एक दिन हफ्ते में ऐसा करें कि उसको कुछ ऐसा बना के दें कि आज ये शेयर करके खाना सबके साथ, या तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं खास खास उनके साथ शेयर करना, तो छोटी चीजें हैं ना। जैसे मुझे अच्छे से याद है, हमें मेरे नाम का ही एक मेरा फ्रेंड होता था, उसका भी नाम सतीश था, मेरा भी सतीश
0: जी।
1: तो उस हम एक ही उम्र के थे, तो उसकी माता जी मुझे उसको सतीश नहीं बुलाने देती थी।
0: अच्छा।
1: वो बिहार से थे तो मुझे बोलती थी बेटा इसको मीता बुलाओ।
0: अच्छा।
1: मीत बुलाओ या किसी और कुछ और नाम से बुलाओ, इस नाम से मत बुलाओ। तो मैं उससे क्या होता है आंटी बोले जो उम्र कम होती है, तो उम्र तो क्या कम होती है, वो तो जो ईश्वर ने देके भेजा वो है। लेकिन सिद्धांत ये है कि इस बहाने मतलब एक कनेक्टिविटी डेवलप हुई, वो मुझे आज तक याद है
0: जी।
1: और भी तो बहुत सारे दोस्त थे ना, नहीं याद है,
0: नहीं याद है।
1: वो एक छोटा सा सेंटेंस कि मीता बुलाओ ने सतीश को मेरी चेतना में जिंदा रखा हुआ है आज भी। ये बड़ी बात है ना
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भी बहुत सारे दोस्त थे, नहीं याद है। तो ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में छोटे बच्चों के साथ छोटी ही चीज की जाए। तो संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है आप इंजेक्शन की सिरिंज में भर के उसको किसी तो इंजेक्ट करवा दें तो संस्कार चले जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। संस्कार क्या है? संस्कार जो आपके आसपास हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, वही संस्कार डेवलप हो जाता है। जो आप लगातार देखते रहते हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं, जो आप लगातार करते रहते हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं। अब देखिए लोग बच्चों को ले जाते हैं गुरुद्वारे में या कहीं मंदिर में, वहां सेवा करवाते हैं उनसे, चप्पल इधर रख उधर रख बेटा, इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो धीरे धीरे वो संस्कार में डेवलप हो जाएगा ना।
0: जी बिल्कुल आपने ठीक कहा।
1: हम ऐसा कुछ एकदम कुछ नहीं कर सकते एट रैंडम। तो हम बच्चों को पिछली अच्छी बातें बताएं तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों को। कुछ ऐसी कहानी सुनाएं, कुछ ऐसी बात बताएं, कुछ ऐसा सीरियल दिखाएं जिससे हमारा पुराना जो हमारा गौरव था वो भी उसको बच्चे को पता लगे, और नई चीजों का भी साथ साथ समावेश करते हुए उसको हम ये भी बताएं कि ये जो आज है ये भी तुम्हारा है, तुम्हें कल लोग तब याद रखेंगे जब तुम इसको सुंदर बनाओगे जैसे कि तुम उनको याद कर रहे हो जिन्होंने इसको पहले सुंदर रखा होता। तो इस किताब की बड़ी सार्थकता है, इसलिए मुझे ये इसमें बड़ा आनंद आया
0: जी
1: कि छोटी छोटी चीजें हैं ना। आप बहुत सरल भाषा में दो दो लाइनों में पूरा जीवन ये मतलब आप सोचिए 60 पन्नों में समेट दिया।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर अतुल कृष्ण
0: जी,
1: कमाल
0: जी। दोस्तों ये वार्ता ऐसे ही जारी रहेगी, बहुत ही सुंदर, सर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और समझा रहे हैं, तो यकीनन आपको भी समझ आया होगा कि बच्चों का पालन पोषण या उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए या फिर उनको किस प्रकार से हमें संस्कार देने चाहिए। अगर आपके बच्चे को 10 महापुरुषों के नाम नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि दुनिया जहान की चीजें तो उनको मिल जाती हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके महापुरुष कौन रहे, बच्चों के आदर्श कौन बनेंगे। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि एक छोटे बच्चे को कम से कम 10 नाम तो बताओ, उन लोगों के बारे में बताओ तो सही। इस बारे में सर आपका क्या कहना है?
1: मुझे बड़ा अचंभा होता है कि महापुरुषों के तो छोड़ दीजिए, अपने दादा दादी के नाम भी बच्चों को नहीं पता है आज की डेट में।
0: नहीं पता होते सर,
1: नाना नानी के नाम नहीं पता, पर दादा परदादी किसी को पता होगा तो परदादा परदादी का नाम तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा।
0: नहीं पता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: और उससे ऊपर की पीढ़ी का तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो अगर हम अपना जो परिवार है, जो बिल्कुल जहां से हम आ रहे हैं रूट्स, इसीलिए मैंने कहा ना कि अपनी जड़ों का भी हमें एहसास होना चाहिए। हमारा जो जहां से निकल के आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, हमें उस रास्ते का ही ज्ञान नहीं है। तो बाहर का ज्ञान तो हम तब अर्जित करें ना, हमें तब इंटरेस्ट डेवलप होगा जब हमें अपने वालों में होगा पहले
0: जी। जी
1: तो पहले तो हम ये बताएंगे भी तुम्हारे परदादा वो थे, उनका इतना बड़ा बाग था, उनका उसमें इतने बाग होते थे, उस समय अकाल पड़ा था, तो उन्होंने सबको बोल दिया था भाई तुम खाओ, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है और ये सच है। मेरे अपने ही मेरे फादर मुझे बताते थे कि हमारी गाजरें एक बार लगी हुई थी, उस समय ऐसे ऐसे फसल खराब होगी, कुछ आपदा आ गई, तो तुम्हारे दादाजी ने बोला कि इसमें से सब अपना अपना गुजारा करते रहो, थोड़ा थोड़ा ले जाके रोज, लूटो मत लेकिन अपना गुजारा करो।
0: लेकिन ये आपने सच कहा कि अपनी ही पीढ़ियों का नहीं पता किसी को।
1: बड़े बड़े काम किए हैं हमारे पूर्वजों ने, ऐसा नहीं है नहीं किया, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, जिन्होंने 1947 का दौर देखा है या उससे पहले जो आजादी का दौर देखा है, तो वो सारे थोड़ी फेमस हुए हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: उसमें हमारे भी अपने कुछ लोग रहे होंगे जो जिन्होंने बहुत कुछ खोया होगा लेकिन वो सामने नहीं आ पाए।
0: तो सर ये
1: हम अपने बच्चों को अगर पहले अपनों का महत्व बताएं, उसके साथ ही हम ये भी दूसरे को भी जोड़ सकते हैं, तब हम उसका बोलेंगे तुम बाल गंगाधर तिलक का नाम 10 बार बोलो तुम्हें रट जाए, तो रट लेगा वो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर वो उसके चिरंतन जो वो होता है, जो उसके मानस जो है जिसमें वो हमेशा रहे नाम, वो संभव नहीं हो पाएगा। वो तभी होगा जब वो किसी कनेक्टेड चीज से आपका वो नाम उसको बताया जाएगा।
0: जैसे सर ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो है सूर्यवंशी थे, या उन पीढ़ियों दर याद रहता है लोगों को, ज्यादातर दादाजी तो चलो अवेलेबल भी होते हैं कि परदादा ये थे, वो वहां से आए थे, वो उन्होंने इतनी गरीबी देखी या उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, तो बच्चे के अंदर भी एक भाव प्रकट होगा कहीं ना कहीं कि देखो मेरे परदादा या मेरा खानदान वहां से चला आ रहा है, तो फीलिंग भी डेवलप होगी। सर ये बहुत अच्छी बात सर आपने यहाँ पर,
1: तो वहीं से पहले आप घर में मजबूत हो जाओगे तब तो आसपास मजबूत होगी ना, तब तो आप और लोगों को जानने में इंटरेस्ट आएगा आपका। मैं तो भी मेरे फादर मेरे दादाजी आजादी की लड़ाई में थे, और मंगल पांडे ने जब वो विद्रोह शुरू हुआ था तो उसमें उसके वो भी एक हिस्सा थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मंगल पांडे के साथ हाथ मिला खड़े थे वो,
0: जी
1: ना
0: जी,
1: पर मैं कह रहा हूँ कि जो विद्रोह की चिंगारी मंगल पांडे ने शुरू की थी कालीपल्टन मंदिर से,
0: जी
1: उस पूरी वो जो एक अभियान चला था उस अभियान का तुम्हारे परदादा जी हिस्सा थे। और सच बात यह है कि हर किसी का दादा परदादा उसका हिस्सा रहे, ऐसा नहीं है कि मेरे ही परदादा रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे, सबके रहे होंगे किसी न किसी रूप में, सब नहीं। तो उस समय तो एक भाव चलता था, गांधी जी के पीछे चले सारे ही चले,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई गांधी जी के ने जो ये वाला अभियान चलाया था नमक वाला,
0: नमक दांडी मार्च,
1: हाँ, तो तुम्हारे परदादा उसके साथ जुड़े हुए थे,
0: एक फीलिंग आएगी ना।
1: तो मैं ये कह रहा हूँ जुड़े हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ दांडी मार्च में थे,
0: जी जी,
1: पर जुड़े तो थे, सबने छोड़ा था ना नमक। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि भाई एक दिन उपवास कर लो, तो सारे जुड़े रहे। तो इस बात को मैं ये कहूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा बोला था, देश में अन्न की कमी थी तो एक दिन वो करो, तो और मैं अगर इसको इस ढंग से कहूँ कि देखो जब उन्होंने ये बोला तो उस समय तुम्हारा

एक हाथ में बंसी उसके, एक हाथ में चक्र संघार है। मेरा कान्हा बंसी वाला सबका पालनहार है। सुनिए श्रीमद् भागवत गीता वास्तु कृष्णा के साथ सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। और जीवन के कठिन से कठिन दौर को भी आसानी से पार कर जाइए।

0: कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। गीता है जीवन की असली गाइड।
1: यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सदात्मानम् सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि।
0: सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। हरे कृष्णा। जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: अकेला भी है तो गम न कर, तेरे साथ वो है
1: रघुनंदन। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन।
0: पावर ऑफ हनुमान।
2: यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जय।
0: हर मंगलवार वास्तु कृष्ण के साथ सुबह सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
2: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
3: जय श्री राम।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: पर
2: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
3: जय श्री राम।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान।

जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान। सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के साथ।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: Subharti Azad Hind Radio 90.0 FM par Vastu Krishna ke saath.
2: Subharti Azad Hind Radio 90.0 FM. राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: जीरो एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्य

0: पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: तो भाई बात कहां से कि राजा कमंडन अर्जुन को अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहता है उत्तराखंड। तो अर्जुन कहने लगा कि महाराज उसको तो मैंने शिक्षा दे रखी है, वो तो मेरी बेटी समान है। तो राजा कमंडन कहने लगा कि तो भाई, कहने लगा महाराज मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अभिमन्यु, उसके साथ शादी कर दो। इतने में द्रौपदी आ जाती है और द्रौपदी अर्जुन से क्या कहती है,
3: ए रक्षत्रापण की लाज रही ना, थारे किसे बात का डर को न्या, और बहू

0: और सनातन के रंग सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
6: तेरा के सुप

0: सुभारति आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर।
4: साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आदि चरित्र की, ये है क्वालिटी ऑफ थॉट कि आपको समझने में देर ना लगे, उनको समझाने में देर ना लगे, पिन पॉइंट
1: जी
0: जिसको बोलते हैं बात। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है
1: जी,
0: क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे एक होता है हमारा व्यक्तिगत चरित्र
1: जी,
0: एक होता है राष्ट्रीय चरित्र
1: जी।
0: मेन अगर मैं इसको बांट दूं दो मोटे हिस्सों में
1: जी,
0: तो एक व्यक्तिगत चरित्र है, एक मेरा अपना अपना सिस्टम है, मैं क्या सोचता हूँ क्या करता हूँ,
1: ठीक
0: तो वही है
1: जी।
0: और एक राष्ट्रीय चरित्र है कि मैं राष्ट्र की बात अगर कर रहा हूँ तो मेरा क्या चरित्र है, मैं राष्ट्र को किस दृष्टि से देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बात घूम फिर के वही है
1: जी
0: कि मैं देखता कैसे हूँ और उस देखे हुए को मैं अपने कार्यों में परिलक्षित कैसे होने देता हूँ, उसे परिवर्तित कैसे होने देता हूँ,
1: ठीक
0: वो चीज है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा सा वो आता है कि अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, तो दो तरह की होती है, एक अटेंडेड अवेयरनेस एक अनअटेंडेड अवेयरनेस। जिस चीज में आप अटेंडेड अवेयरनेस में होते हैं आप बहुत कॉशियस होते हैं उसके बारे में, मतलब कहने का जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जहां आपका मैं जुड़ा हूं, अपनत्व जुड़ा है, वहां पे आपको सब कुछ, लेकिन उसको वो जो अपनत्व जुड़ा है अगर हम उसका फैलाव कर दें थोड़ा सा, कोई भी जो पौधा उगता है वो बीज वो पहले हुआ चार पत्ते आए, फिर छह, फिर दस, फिर बारह, फिर ब्रांचेस, फिर वो एक विशाल वृक्ष में कन्वर्टेड हो गया और बहुत सारे लोगों को छाया और उसने रेजिडेंस देना प्रोवाइड कर दिया, फल फूल देना शुरू कर दिया। नदियों का विस्तार भी इसी तरह से है, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो एक सीधा सीधा चरित्र का आईना है हमारे लिए कि आप क्या सोच रहे हैं उसको आप आगे परिलक्षित कैसे कर रहे हैं, आप बता कैसे रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए। आपने सोचा कि सब बहुत अच्छा हो, मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे सब रास्ता दे दें, मेरे लिए सब ऐसा करें, मेरे लिए ऐसा करें, मेरे को ये मिलना चाहिए, मुझे नौकरी टाइम पे मिल जाए, पढ़ाई अच्छी मिल जाए, वो सब कुछ मिल जाए, ठीक है। मतलब मी सिंड्रोम जिसको मैं बोलता हूँ, मेरे आसपास बस
1: सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए जी,
0: ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप उससे कनेक्टेड है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ
1: जी,
0: ऐसा संभव नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ ना करूं, सब कोई मेरे लिए सब कुछ करे, मैं राष्ट्र के हित में कुछ ना सोचूं, राष्ट्र मेरे हित में सब कुछ सोचता रहे, मैं प्रकृति के हित में कुछ ना सोचूं, प्रकृति मेरे लिए सब कुछ सोचती रहे, मैं समाज के लिए कुछ ना सोचूं, समाज मेरे लिए सब कुछ सोचता रहे।
1: वो ये बिल्कुल वही बात है ना सर, कि भगत सिंह दूसरे के घर में होना चाहिए, मेरे बच्चे अपना काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चरित्र एक इतनी बड़ी एक चीज है कि भाई आप अच्छा सोचिए
1: जी सर,
0: और अच्छा करिए बस, इससे ज्यादा तो कुछ कहा ही नहीं गया।
1: सर हमारे परिवारों में बच्चों को भी चरित्र निर्माण किया जाता है या संस्कार दिए जाते हैं, और जो भी माता पिता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ज्यादातर मोबाइल देखते हैं आजकल, वैसे संस्कार तो मोबाइलों से ही ले रहे हैं सब, लेकिन फिर भी अगर कोई नई पीढ़ी के माता पिता आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को कम से कम वो चार बातें तो जरूर सिखाइए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए?
0: देखिए सबसे सबसे पहली चीज बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं इस संसार में हूं, है ना, तो जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे आसपास है, वो सब मेरा है। अपनत्व का भाव आपको जगाना पड़ेगा, खाली वही उसका नहीं है जो उसके हाथ में है, जो किसी और के हाथ में है वो भी एक तरह से उसी का ही है, तो तभी उसके मन में एक अपनत्व की भावना जागना, जैसे पहले बोलते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग,
1: हाँ जी,
0: वो चीजें सिखाई जाती थी
1: जी।
0: फिर ये सिखाया जाता था कि इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, पहले स्कूल में ये सब चीजें बताई जाती थी, अब नहीं बताई जाती हैं, आजकल कम बताते हैं
1: जी।
0: तो वो चीजें जो हैं, अगर हम घर में, इसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना नहीं, सिंपल हम घर में व्यवस्था ही ऐसी बनाए कि बच्चे को बताने से ज्यादा दिखाए, उसे अपने साथ बिठा के खाना खिलाइए, उसको भाई बहन है तो उसके साथ शेयर करने की आदत डालिए, कुछ ऐसा उसको दीजिए, हम टिफिन उसी को देते हैं कि भाई ये तू ही खाना और किसी को मत देना, बच्चा स्कूल जाता है तो हम ये सोचते हैं बस यही पहलवान हो जाए, हाँ। यही सब कुछ खा ले,
1: हाँ।
0: लेकिन अगर हम उसको एक दिन हफ्ते में ऐसा करें कि उसको कुछ ऐसा बना के दें कि आज ये शेयर करके खाना सबके साथ, या तुम्हारे जो

0: फ्रेंड्स हैं खास खास उनके साथ शेयर कर रहा
1: हूँ।
0: छोटी चीजें हैं ना, जैसे मुझे अच्छे से याद है हमें मेरे नाम का ही एक मेरा फ्रेंड होता था, उसका भी नाम सतीश था, मेरा भी सतीश
1: जी।
0: तो उस हम एक ही उम्र के थे, तो उसकी माता जी मुझे उसको सतीश नहीं बुलाने देती थी।
1: अच्छा।
0: वो बिहार से थे तो मुझे बोलती थी बेटा इसको मीता बुलाओ।
1: अच्छा।
0: मीत बुलाओ या किसी और कुछ और नाम से बुलाओ, इस नाम से मत बुलाओ। तो मैं उससे क्या होता है आंटी बोले से उम्र कम होती है, तो उम्र तो क्या कम होती है, वो तो जो ईश्वर ने देके भेजा वो है। लेकिन सिद्धांत ये है कि इस बहाने मतलब एक कनेक्टिविटी डेवलप हुई, वो मुझे आज तक याद है
1: जी।
0: और भी तो बहुत सारे दोस्त थे ना, नहीं याद है,
1: नहीं याद है।
0: वो एक छोटा सा सेंटेंस कि मीता बुलाओ ने सतीश को मेरी चेतना में जिंदा रखा हुआ है आज भी। ये बड़ी बात है ना
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भी बहुत सारे दोस्त थे, नहीं याद है। तो ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में छोटे बच्चों के साथ छोटी ही चीज की जाए, तो संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है आप इंजेक्शन की सिरिंज में भर के उसको किसी इंजेक्ट करवा दें तो संस्कार चले जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। संस्कार क्या है? संस्कार जो आपके आसपास हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, वही संस्कार डेवलप हो जाता है। जो आप लगातार देखते रहते हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं, जो आप लगातार करते रहते हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं। अब देखिए लोग बच्चों को ले जाते हैं गुरुद्वारे में या कहीं मंदिर में, वहां सेवा करवाते हैं उनसे, चप्पल इधर रख उधर रख बेटा, इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो धीरे धीरे वो संस्कार में डेवलप हो जाएगा ना।
1: जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा।
0: हम ऐसा कुछ एकदम कुछ नहीं कर सकते एट रैंडम। तो हम बच्चों को पिछली अच्छी बातें बताएं तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों को। कुछ ऐसी कहानी सुनाएं, कुछ ऐसी बात बताएं, कुछ ऐसा सीरियल दिखाएं जिससे हमारा पुराना जो हमारा गौरव था वो भी उसको बच्चे को पता लगे, और नई चीजों का भी साथ साथ समावेश करते हुए उसको हम ये भी बताएं कि ये जो आज है ये भी तुम्हारा है, तुम्हें कल लोग तब याद रखेंगे जब तुम इसको सुंदर बनाओगे जैसे कि तुम उनको याद कर रहे हो जिन्होंने इसको पहले सुंदर रखा होता। तो इस किताब की बड़ी सार्थकता है, इसलिए मुझे ये इसमें बड़ा आनंद आया
1: जी
0: कि छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप बहुत सरल भाषा में दो दो लाइनों में पूरा जीवन ये मतलब आप सोचिए 60 पन्नों में समेट दिया।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर अतुल कृष्ण
1: जी,
0: कमाल है
1: जी। दोस्तों ये वार्ता ऐसे ही जारी रहेगी, बहुत ही सुंदर, सब भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और समझा रहे हैं, तो यकीनन आपको भी समझ आया होगा कि बच्चों का पालन पोषण या उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए या फिर उनको किस प्रकार से हमें संस्कार देने चाहिए। अगर आपके बच्चे को 10 महापुरुषों के नाम नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि दुनिया जहान की चीजें तो उनको मिल जाती हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके महापुरुष कौन रहे, बच्चों के आदर्श कौन बनेंगे। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि एक छोटे बच्चे को कम से कम 10 नाम तो बताओ, उन लोगों के बारे में बताओ तो सही। इस बारे में सर आपका क्या कहना है?
0: मुझे बड़ा अचंभा होता है कि महापुरुषों के तो छोड़ दीजिए, अपने दादा दादी के नाम भी बच्चों को नहीं पता है आज की डेट में।
1: नहीं पता होते सर,
0: नाना नानी के नाम नहीं पता, पर दादा पर दादी किसी को पता होगा तो पर दादा पर दादी का नाम तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा।
1: नहीं पता, बिल्कुल ठीक है।
0: और उससे ऊपर की पीढ़ी का तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो अगर हम अपना जो परिवार है, जो बिल्कुल जहां से हम आ रहे हैं रूट्स, इसीलिए मैंने कहा ना कि अपनी जड़ों का भी हमें एहसास होना चाहिए, हमारा जो जहां से निकल के आ रहे हैं, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, हमें उस रास्ते का ही ज्ञान नहीं है, तो बाहर का ज्ञान तो हम तब अर्जित करें ना, हमें तब इंटरेस्ट डेवलप होगा जब हमें अपने वालों में होगा पहले।
1: जी जी।
0: तो पहले तो हम ये बताएंगे भी तुम्हारे परदादा वो थे, उनका इतना बड़ा बाग था, उनका उसमें इतने बाग होते थे, उस समय अकाल पड़ा था तो उन्होंने सबको बोल दिया था भी तुम खाओ, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है और ये सच है। मेरे अपने ही मेरे फादर मुझे बता देते कि हमारी गाजरें एक बार लगी हुई थी उस समय, ऐसे ऐसे फसल खराब होगी, कुछ आपदा आ गई, तो तुम्हारे दादाजी ने बोला कि इसमें से सब अपना अपना गुजारा करते रहो, थोड़ा थोड़ा ले जाके रोज लूटो मत लेकिन गुजारा करो।
1: लेकिन ये आपने सच कहा कि अपनी ही पीढ़ियों का नहीं पता। हाँ, किसी को
0: बड़े बड़े काम किए हैं हमारे पूर्वजों ने, ऐसा नहीं है नहीं किया, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, जिन्होंने 1947 का दौर देखा है या उससे पहले जो आजादी का दौर देखा है, तो वो सारे थोड़ी फेमस हुए हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: उसमें हमारे भी अपने कुछ लोग रहे होंगे जो जिन्होंने बहुत कुछ खोया होगा लेकिन वो सामने नहीं आ पाए।
1: तो सर ये
0: तो हम अपने बच्चों को अगर पहले अपनों का महत्व बताएं, उसके साथ ही हम ये भी दूसरे को भी जोड़ सकते हैं तब। हम उसका बोलेंगे तुम बाल गंगाधर तिलक का नाम 10 बार बोला तुम्हें रट जाए, तो रट लेगा वो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पर वो उसके चिरंतन जो वो होता है, जो उसके मानस जो है जिसमें वो हमेशा रहे नाम, वो संभव नहीं हो पाएगा। वो तभी होगा जब वो किसी कनेक्टेड चीज से आपका वो नाम उसको बताया जाएगा।
1: जैसे सर ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो है सूर्यवंशी थे, या उन पीढ़ियों दर याद रहता है लोगों को, ज्यादातर दादाजी तो चलो अवेलेबल भी होते हैं कि परदादा ये थे, वो वहां से आए थे, वो उन्होंने इतनी गरीबी देखी या उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, तो बच्चे के अंदर भी एक भाव प्रकट होगा कहीं ना कहीं कि देखो मेरे परदादा या मेरा खानदान वहां से चला आ रहा है, तो फीलिंग भी डेवलप होगी सर। ये बहुत अच्छी बात सर आपने यहाँ पर,
0: तो वहीं से पहले आप घर में मजबूत हो जाओगे तब तो आसपास मजबूत होगे ना, तब तो आप और लोगों को जानने में इंटरेस्ट आएगा आपका। मैं को भी मेरे फादर मेरे दादाजी आजादी की लड़ाई में थे, और मंगल पांडे ने जब वो विद्रोह शुरू हुआ था तो उसमें उसके वो भी एक हिस्सा थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मंगल पांडे के साथ हाथ मिला खड़े थे वो,
1: जी
0: ना जी, पर मैं कह रहा हूँ कि जो विद्रोह की चिंगारी मंगल पांडे ने शुरू की थी कालीपल्टन मंदिर से,
1: जी
0: उस पूरी वो जो एक अभियान चला था उस अभियान का तुम्हारे परदादा जी हिस्सा थे। और सच बात यह है कि हर किसी का दादा परदादा उसका हिस्सा रहे, ऐसा नहीं है कि मेरे ही परदादा रहे होंगे, आपके भी रहे होंगे, सबके रहे होंगे किसी न किसी रूप में, सब नहीं। तो उस समय तो एक भाव चलता था, गांधी जी के पीछे चले सारे चले,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई गांधी जी के ने जो ये वाला अभियान चलाया था नमक वाला,
1: नमक दांडी मार्च,
0: हाँ, तो तुम्हारे परदादा उसके साथ जुड़े हुए थे,
1: एक फीलिंग आएगी ना।
0: तो मैं ये कह रहा हूँ जुड़े हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ दांडी मार्च में थे,
1: जी
0: पर जुड़े तो थे, सबने छोड़ा था ना नमक। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि भाई एक दिन उपवास कर लो, तो सारे जुड़े रहे। तो इस बात को मैं ये कहूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा बोला था, देश में अन्न की कमी थी तो एक दिन वो करो, तो और मैं अगर इसको इस ढंग से कहूँ कि देखो जब उन्होंने ये बोला तो उस समय तुम्हारे दादाजी ने ये बोला कि सब उपवास रखेंगे सोमवार को, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है और देश को इस तरह से करना है।
1: तो वो प्राउड,
0: तो वो बच्चा कनेक्ट करेगा ना, वो प्राउड भी फील करेगा। अब उसको दो नाम याद हो गए, उसको दादाजी का भी नाम याद हो गया और उस महापुरुष का भी नाम याद हो गया उसको,
1: बिल्कुल सर,
0: और पूरा जीवन याद रहेगा। ये छोटे छोटे तरीके हैं,
1: इसे कोई और तो सिखाएगा नहीं, आपके पेरेंट्स या परिवार ही सिखा सकता है
0: नेचुरली। बाकी तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी चलती है ना, वो तो सिखाएगी।
1: लेकिन बहुत अच्छी चीज आज के कार्यक्रम की रही दोस्तों, आज मैंने भी ये सीखा कि अपने बच्चों को अपने फैमिली ट्री के बारे में बताना चाहिए कि आपकी पीढ़ियां आपकी पुश्तें कहां से चली आ रही हैं। जी जी, तो दोस्तों अगली कड़ी में फिर आपसे होगी मुलाकात। आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएगा सर। चलते चलते आपका कोई संदेश?
0: छोटा सा संदेश यही है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में हैं, 6 ऋतुएं हैं, बहुत तरह का खाना है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के रंग रूप हैं, विविध वनस्पतियां हैं, इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और ये एक ऐसा देश है जिसमें वीर भोग्या वसुंधरा जिसको हम बोलते हैं, बड़े बड़े वीर हुए हैं यहाँ। आज कोई वहां कभी जाके देखते हैं राजस्थान में तो उनका जो महाराणा प्रताप का जो वो है तलवार और उनका जो ढाल
1: कवच, और
0: कवच 160 किलो का है।
1: जी जी,
0: कवच जितना वजन नहीं होता आज की डेट में,
1: दो नहीं होता सर।
0: तो ये हम वीर भोग्या वसुंधरा में पैदा हुए हैं और शस्य श्यामला धरती है ये, इतनी सारी नदियां, इतने सारे यहाँ पे देवी देवता और भगवान किसी न किसी रूप में, पीर पैगंबर सब यहाँ पे आए
1: जी।
0: तो बहुत अच्छा, हमारी बहुत लकी है इस चीज के लिए
1: जी।
0: तो मेरा संदेश ये है कि ये हमारी धरोहर है। जैसे हम एक छोटे से सोने के टुकड़े को भी लाल कागज में लपेट के लॉकर में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं जिसका कोई पता नहीं है
1: जी,
0: तो इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, हम इसके लिए भी इसको भी एक डायमंड की तरह, एक सोने की तरह इसको भी सजा के संवार के संभाल के रखें
1: जी।
0: कुछ ना कुछ योगदान जरूर करें, दो पौधे लगाएं उसको, और कुछ नहीं लगा सकते तो जो लगा हुआ उसको पानी दे दें कभी
1: जी,
0: उसके सूखे पत्ते ही तोड़ दें, कुछ ना कुछ सफाई में ध्यान दें, कुछ चीजों को साफ सुथरा रखें, अपने देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें
1: जी।
0: चार लोगों को ये एहसास हो, जब आप बोलेंगे तो दो चार और बोलेंगे, मैं ही बोलूं कि क्या है यार इंडिया वहां तो ऐसा वैसा, तो फिर दूसरा भी कोई क्यों बोलेगा, जब मुझे ही सम्मान नहीं है अपनी किसी वस्तु पे तो किसी दूसरे को क्यों होगा
1: बिल्कुल, सिर्फ समस्या नहीं समाधान के बारे में भी बात करते चलेंगे। दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताएगा, फिर होगी मुलाकात। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्ण और कार्यक्रम है आपका राष्ट्र चेतना। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है संस्कार को और बढ़ाना। वैसे तो हम सभी अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि सिविक सेंस की कमी नजर आ रही है। चाहे सड़कों पर चलते हुए गंदगी के अंबार नजर आना, या एक दूसरे को गाली गलौज करना, या किसी भी चीज की परवाह ना करना। संस्कार तो हम सब देते हैं। माता पिता कभी भी बच्चों को गलत चीज नहीं सिखाते, लेकिन फिर भी वो क्या चीज की कमी रह गई कि राष्ट्रीयता या देश के प्रति जो भावना है, जो देश के प्रति सम्मानजनक जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखती। इस विषय में बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुभारती विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन के HOD आदरणीय रितेश चौधरी जी को। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ।
2: धन्यवाद कृष्णा जी।
1: सबसे पहले सर, सवाल उठता है जब भी कोई छोटा बच्चा होता है किसी परिवार में, तो एक संस्कार की बात होती है कि हमें हमारे माता पिता ने बड़े प्यार से पाला है, संस्कार दिए हैं, और हर माँ बाप ये कहता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं, संस्कार मतलब क्या?
2: देखिए, हर वो चीज जो किसी भी व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न बनाने की तरफ बढ़ाती है।
1: जी,
2: एक बच्चे को एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो समाज में रहने लायक बनता है। शायद उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें एक सिविक सेंस की बात हो जाती हो। वो सारी चीजें जो व्यक्ति को व्यक्ति के साथ आचरण, व्यक्ति का प्रकृति के साथ आचरण, व्यक्ति का सजीव और जीव निर्जीव सभी के साथ जो एक आचरण है, और खुद की जो सामाजिक प्रस्तुति है, उसे हम शायद संस्कार के रूप में देख सकते हैं।
1: जैसे अगर वृद्धाश्रम है, वहां पर भी जो बुजुर्ग माता पिता वहां पर रहते हैं, अकेले पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रहेगी। चाहे उन बुजुर्ग माता पिताओं को अनाथ आश्रम में डालने वाले भी उनके कोई तो बच्चे ही हैं, या सड़कों पर चलते समय दूसरी लड़कियों के या महिलाओं के साथ में बदतमीजी करने वाले भी कोई तो लोग हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में आज ये बात उठ रही है कि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। आपको क्या लगता है कि कहां कमी है और इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है?
2: देखिए, जो अभी आपने एक बात कही, हालांकि नकारात्मक बात है कि देश के अंदर जो है वृद्धाश्रम है
1: जी,
2: लेकिन हम लोग को ना अपने मन में एक चीज और लानी चाहिए कृष्णा जी, कि हम नकारात्मकता में भी कहीं कहीं सकारात्मकता ढूंढे। कहीं कोई व्यक्ति तो संस्कारी था जिसने उन एक तरह से मैं कहूँ अनाथ बुजुर्गों के लिए एक आश्रय की स्थान बना दिया, तो इसमें एक सकारात्मकता है। यानी संस्कार समाज से गए नहीं है अभी बीच, लेकिन प्रश्न उठता है कि अनाथ जो हमारे वृद्धाश्रम है वहां तक जाने की स्थिति है, क्यों आ गई है। तो आज देखिए, हम जनरली ये देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चे के साथ बचपन से इस दौड़ में उसे शामिल करना चाहते हैं कि उसे बहुत सारा धन अर्जन करना है। जो हमारी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में इस चीज पर बहुत जोर दिया जाता है कि हम किस तरीके से अधिक अंक अर्जित करें और एक समाज में ऐसी नौकरियों को पाने की कोशिश करें जहां से हमको धन मिल सकता है। प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक बहुत तेजी से हावी होने वाली चीज है। तो अब जब परिवारों में बचपन से ये संस्कार शायद शामिल किया गया है कि पढ़ना किस लिए, नौकरी के लिए, नौकरी किस लिए, पैसे के लिए, तो वहां ये बात कहीं शामिल ही नहीं हो पाई कि हमें उन संस्कारों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी अनुकूल आचरण करना है। अगर मैं मेरे मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं, मैं उन दोनों बच्चों को सिखाता हूँ कि तुम दोनों को साथ साथ रहना है और अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, तो ये सिखाने से नहीं आएगा। ये आचरण मेरे बच्चों को मुझसे महसूस करना होगा कि मैं अपने घर में मेरे छोटे या मुझसे जो बड़े भाई हैं उनके साथ किस तरह का आचरण कर रहा हूँ। परिवार में दो भाई हैं, दोनों के चूल्हे अलग अलग जलते हैं, दोनों अलग अलग जगह रोटी खाते हैं, तो निश्चित है उसका इम्पैक्ट मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि शायद जीवन का मतलब, जीवन में परिवारों का मतलब इसी तरीके से होता है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा मसला है। कई बार हम ये देखते हैं कि मैंने देखा एक घटनाक्रम में कि एक व्यक्ति कोई परिवार में है, वो तीन टॉफियां लेके बाजार से आता है, मैं उदाहरण के तौर पे इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका बेटा और उसका भतीजा वहां पे आता है तो अपने बेटे को दो टॉफियां दे देता है और अपने भतीजे को एक देता है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम भी समाज में मौजूद होते हैं। तो अब क्योंकि शायद उसके मन में अपने के प्रति ये मेरा ब्लड रिलेशन में है, डायरेक्ट जिनसे मेरा संबंध है वो मेरा अपना है, उसे कुछ ज्यादा दे देता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हें अगर पिता कहने वाला कोई और नहीं है तो तुम्हें चाचा कहने वाला या ताऊ कहने वाला भी कोई और नहीं होगा, उसके प्रति भी तुम्हारा समर्पण उसी स्तर पर होना चाहिए। और ये बात धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था तो मैंने वहां उस बात को जाना कि कोई एक व्यक्ति है वो इस बात को कह रहा था कि दो दोस्त थे जो आपस में बात कर रहे हैं, वो बुजुर्ग अवस्था में थे, तो कहता है कि एक व्यक्ति उनमें से कहता है कि मेरा बेटा महीने के 5 लाख रुपया कमाता है और वो किसी विदेश की बड़ी कंपनी के साथ काम करता है, और दूसरे ने कहा कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमाता है लेकिन शाम की रोटी मेरे साथ खाता है। अगर हमने संस्कारों में इस बात को शामिल कर लिया होता कि हमें सांझा चूल्हा, सांझी संस्कृति, सांझी विरासत, तो सांझी सभ्यता, तो हम शायद कहीं इस बात के लिए आज इस पर चर्चा ना कर रहे होते कि देश के अंदर जो है वो वृद्धाश्रम बन रहे हैं और इस तरह की चीजें हो रही है। जहां तक यूटीजिंग का मामला है तो हाँ, ये एक अपराध है और इस पर जो है हम मैं इस बात को खैर महसूस करता हूँ कि शायद देश में अब इस तरह की जागरूकता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी तो आई है। लोग शायद अब अपने परिवारों के अंदर जो कहते हैं ना कि एक भेदभाव की नीति थी लड़कियों के प्रति और लड़कों के प्रति परिवार में, उसी का रिफ्लेक्शन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीजें माता पिता से या परिवारों से या समाज से लेके बच्चा आगे बढ़ा है, उसने देखा है उस भेदभाव को। अब आज हमारे समाज में भेदभाव की खाई बहुत पट रही है, हम ये देख रहे हैं कि उन चीजों में समानता आ रही है, हम देखते हैं कि रोजगारों में अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि महिला और पुरुषों का लगभग समान सा वर्चस्व नजर आता है, हर क्षेत्र में महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ कभी आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सोशल इविल है, हमें कहीं उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, एक पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहिए और डेफिनेटली आने वाले समय में और बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए फिर अगेन वही बात है, ये राष्ट्र अनुभूति की बात है, ये राष्ट्र देश से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की बात है, परिवारों की बात है, ये चेतना की बात है, और ये तभी संभव है जब ऐसी ऊर्जा परिवारों से मिलती है।
1: और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखते हैं जो माता पिता को करते देखते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि घर पर अगर बाहर से कोई व्यक्ति पिता को या घर के किसी परिजन को आवाज लगाता है तो अंदर से ही कोई कह देता है बोल दो यहाँ पर नहीं है, तो झूठ की परंपरा वो बच्चों को वहां से सिखाना शुरू कर देते हैं।
2: सही बात है,
1: तो फिर बड़े होकर बच्चों को ये नहीं कह सकते, या आजकल भी ये देखा जाता है अगर हम बच्चों को कुछ बोलते हैं तो फट से ये जवाब दे देते हैं नहीं नहीं आप भी तो ऐसा करते हैं, मोबाइल हम बच्चे को कम देखने के लिए बोलते हैं लेकिन हम खुद चलाते रहते हैं। और सर चलते चलते मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
2: देखिये मैं संस्कारों के संदर्भ मैंने बहुत सारी बातें कही है कि माता पिता की तरफ से बच्चों की तरफ जाते हैं या समाज की तरफ से जाते हैं, लेकिन मैं इस बात को बहुत बहुत बहुत दिल के करीने से मानता हूँ कि हम सब ने ईश्वर को नहीं देखा है लेकिन हमारे माता पिता ही, कहेंगे गीत है ना वो, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। एक बच्चे को जिस कुछ और नहीं सुनाई देता, माँ की धड़कने सुनाई देती है, माँ बाप हमें उस अवस्था में भी समझते हैं जब हमारे को जब भूख लगती है तो भी हम रोते हैं, हमें अपनी कोई भी नित्य क्रिया करनी है तो उसके संबंध में भी हम रो के अपनी प्रस्तुति करते हैं, जब हमें बोलना नहीं आता है, जब हमें समझाना नहीं आता है, हमारे माता पिता हमें तब भी समझ लेते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि बच्चे कहने लगते हैं मम्मी आप मुझे नहीं समझ रहे हो या पापा आप मुझे नहीं समझ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हर वक्त अपनी धड़कनों से सींचा है, पाला है, वो आपकी बातों को समझते हैं, उनके साथ बैठने की, उनसे बात करने की, उनके प्रेम को महसूस करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो सबसे बड़े शायद संस्कारों का हिस्सा हो।
1: दोस्तों ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जारी रहेगा, सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
3: इसमें क्या हुआ है कि पिछले बहुत से सालों में हमारी जो सनातन का महत्व था या जो इंसानियत का महत्व था, मैं इसको छोड़ देता हूँ इन चीजों को, कोई भी रहा हो अपने आप में, तो जो चीजें हमारे इतिहास हमें बताता है, हमारा जो गौरव बताता है, वो आने ही नहीं दिया गया बच्चों तक। आपके पास कितना समय है बच्चे को बताने का?
1: नहीं,
3: बच्चा 8 घंटे स्कूल में है ना
1: जी,
3: तो वहां जो पढ़ेगा वो आपके पास, आप उसको खाना भी खिलाना है, तैयार भी करना है, तो आप बात करने के लिए तो आपके पास समय बहुत कम है। तो पहले दादा दादी घर में बड़े होते थे तो उनके पास समय होता था, वो बच्चे को बात करते थे।

0: पास तक वो चीजें ट्रांसमिट होती थी किसी ना किसी रूप में. लेकिन बच्चों के तक जो लिटरेरी ज्ञान आया, जो किताबों के माध्यम से आया या जो और किसी रास्ते से आया, वो अशुद्ध आया. तो वहां सबसे पहला जो हास हुआ संस्कारों का, वो वहीं से हो गया कि हमें अपने अपने पुरातन, हमें पता ही नहीं कि कैसे हमारे यहाँ रिश्ते निभाए जाते थे, कैसे हमारे यहाँ पे एक दूसरे का आदर किया जाता था, कैसे हमारे यहाँ जात बिरादरी इन सब चीजों की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती थी. सब आराम से शाम को चौपाल पे बैठते थे, ठंडा पानी छिड़क के और गाते थे, खाते थे. सब वो परंपराएं धीरे धीरे, या कैसे अपने रिश्तों में जाया जाता था छुट्टियों में, कैसे वहां पे वहां की चीजें सीखी जाती थी, या ऐसी ऐसी जगह पे ही ले जाते थे पेरेंट्स जहाँ पे. तो आप कनेक्टेड रहते थे, बच्चे या जो थे वो कनेक्टेड रहता था उन चीजों से.
1: तो क्या ये फर्क कि एकल परिवार हो गए हैं, इसका बहुत फर्क पड़ा है?
0: उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. मैं एक चार लाइनों के एक मुक्तक से आपको इस चीज को आप समझ पाएंगे.
1: जी,
0: जीवंत होने का हमें आभास होना चाहिए. हम जिंदा है, हमें इसका आभास तो होना चाहिए ना.
1: जी,
0: जीवंत होने का हमें आभास होना चाहिए, अपनी जड़ों का भी हमें एहसास होना चाहिए. अपनी अनागत पीढ़ियों को बस यही उपहार हो. यथार्थ का शिराओं में इतिहास होना चाहिए, उनको जो इतिहास भी मिलना चाहिए, वो यथार्थ का, सत्य का मिलना चाहिए जो नहीं मिला.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो आप ये कह सकते हैं कि फिर इतिहास कौन सा मिला उनको, कौन सा इतिहास मिला उनको? उनको इतिहास कौन सा मिला? कुछ लिखा है चारणों ने.
1: कुछ लिखा है
0: चारणों में. चारण जो तारीफ करने वाले दरबारों में लोग होते थे, उनको चारण बोलते थे.
1: ठीक.
0: वो राजा के लिए अच्छा अच्छा बोलते रहते थे.
1: ठीक.
0: कुछ लिखा है चारणों ने, कुछ दलालों ने लिखा, कुछ अलालों ने लिखा, तो कुछ जमालों ने लिखा. अलाल बोलते हैं जो बेकार आदमी होता है, ऐसे जो बैठा रहता है कहीं भी, मतलब जिसको कुछ नहीं करना.
1: जी,
0: इस तरह का. तो उसको आपने कोई भी काम सौंप दिया कि चलिए कर ले, मैं तुझे खाना खिला, उसने कर दिया. और जमाल मतलब किसी जो भी सत्ता में होता है उसका एक जमाल होता है, उसका एक पूरे वो कुछ भी करा सकता है. तो कुछ अलालों ने लिखा, कुछ जमालों ने लिखा. रक्कासा मतलब नृत्यांगना. रक्कासा जैसे रहा सच झूठ के दरबार में, हम प्यालों हम निवालों हम ख्यालों ने लिखा.
1: क्या हुआ?
0: तो ये थैंक यू, ये जो चीजें हैं, मतलब हम सच नहीं पहुंचा पाए अपनी पीढ़ियों तक, ये हमारी एक कमी रही है. और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम आज भी नहीं पहुंचा रहे. हम अभी भी नहीं पहुंचा रहे. तो राष्ट्रभक्ति जहां से आपने बात शुरू की थी, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो ठोस है. डॉक्टर अतुल का जो अभियान है राष्ट्र प्रथम का, वो इस चीज का तो एक बहुत बड़ा मापदंड है ना इस चीज का. ये कोई ऐसी चीज नहीं आपने यहां से उठाई यहां रख दी. लिखने लगा मैं राष्ट्र पर, तो शब्द थोड़े पड़ गए, प्रारब्ध थोड़े पड़ गए. क्या लिख सकते हो आप राष्ट्र के बारे
1: में?
0: ये एक भावना है, ये एक चेतना है, ये आपके मन में है. आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है
1: जी,
0: आप उसको संभालने के लिए क्या क्या यत्न करते हैं? उस पर बढ़िया सा कवर चढ़ाते हैं, उस पर टेम्पर गार्ड कुछ लगाते हैं, स्क्रीन ना टूट जाए, संभाल के रखते हैं, 100 चीजें करते हैं उसके
1: जी,
0: साथ
1: जी.
0: तो इतनी बड़ी जो धरोहर है हमारे पास, जो हमारी पहचान है, फोन हमारी पहचान नहीं है?
1: नहीं सर.
0: लेकिन राज तो हमारी पहचान है ना
1: जी.
0: इसकी धरती में हमने यहाँ से जीवन पाया है, यहीं से रस रंग रूप सब इसी धरती से मिला है. तो इसका ये इससे महंगी चीज हमारे जीवन में क्या हो सकती है? तो उसके संरक्षण के लिए कोई हमें कोई ठोस बंदूक लेके थोड़ी खड़े होना. अगर हमारे मन में है तो जैसे मोबाइल की केयर कर रहे हैं ऐसे इसकी भी करेंगे
1: सर.
0: तो रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप राष्ट्र को राष्ट्र मान लें, समझ लें ना. वो एक चेतना है. राष्ट्र और आप अलग अलग नहीं है. जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि राष्ट्र है तो मैं हूं तो राष्ट्र,
1: उस दिन ये सब फिर हमें बात करने की जरूरत नहीं
0: ना. आप ये मैं गारंटी देता हूं कि बिना आप पढ़े कहीं से, बिना किसी ज्ञान प्राप्त किए, आप थूकेंगे नहीं कहीं
1: जी,
0: आप कोई कागज ही नहीं फेंकेंगे. आप अपने मंदिर में करते हैं ऐसा कुछ गलत काम?

0: नहीं करते सर।
1: पूजा के स्थान में या रसोई में कोई ऐसे गंद फेंकते
0: हैं? नहीं, नहीं फेंकते। अपने घर को तो क्लीन रखने की पूरी कोशिश रहती है ना,
1: रहती है ना। तो जब मुझे ये पता है कि ये तो मेरा घर है, मेरा ये सब कुछ, ये राष्ट्र मैं ही हूँ, तो आप इसे नहलाएंगे धुलाएंगे, आप पेड़ पौधे लगाएंगे, इसको साफ सुथरा रखेंगे, इसके लिए हर वो यत्न करेंगे जिससे ये पता लगे कि हाँ ये हम बात करते हैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इतने साफ हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ये हैं, इतने वो, कौन करता है। वहां जाके तो आप भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और अपने देश में उतरते ही सबसे पहला काम ये करते हैं आपकी, अपने पानी की बोतल को आप कहीं भी फेंक
0: देते हैं सर। कहीं ना कहीं जैसे हम अपनी नदियों को माता कहते हैं, मंदिरों को पूजते हैं, या हमारी तो परंपरा सनातन की कि पेड़ पौधे नदी हर किसी को पूजते हैं हम तो पहाड़, लेकिन आज चाहे केदारनाथ पर जाकर गंदगी फैलाना एक समस्या हो, या अभी जैसे आपने विदेशों का जिक्र किया, वहां की थेम्स नदी है वो इतनी साफ है, बढ़िया है, पोर्टेबल वाटर उनकी नदियों में बहता है, हमारे यहाँ पर मना करने के बावजूद ऐसी अनेकों वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी कि लोगों को मना करें कि हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, आप ये सामान जो पूजा पाठ का नदी या इस नाले में मत फेंकिए, फिर भी लोग जबरदस्ती नजर बस्ती फेंकते, उसके पीछे क्या कारण है सर?
1: मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी चेतना जो है वो सुसंस्कृत नहीं है है ना। पूजा करने का महत्व तो हम जानते हैं, वो तो हमें पता है कि भाई हमको पूजा करनी, घंटी बजानी, धूप बत्ती करनी है, अपना जो भी हम प्रार्थना करते हैं उसको करें। लेकिन जो निर्माल्य है, जो पूजा में जो वस्तु आपने उपयोग की, वो भी तो प्रकृति दत्त है ना आपको
0: जी।
1: आपने फूल चढ़ाया, वो कहीं से प्रकृति ने आपको दिया है ना।
0: बिल्कुल सर।
1: थोड़ी देर पहले थे तो खूब महक रहा था, आप उसको समर्पित कर रहे थे प्रभु चरणों में। लेकिन व्यवस्था तो संभव है ना। घर का जो कचरा है किचन का, जब वो व्यवस्थित रूप से आप गीला अलग सूखा अलग वो दो तरह के डस्टबिन में रख के, या आप वो गाड़ी वाले को देते हैं, उसको तो आप घर में नहीं पड़ा रहने देते 5-6 दिन ऐसे ही। उसको तो सही ढंग से देते हैं ना। कुछ लोग करते हैं, उसको भी फेंकते भी हैं इधर उधर जाके, वो अपनी अपनी व्यवस्था है सबका।
0: घर में या गली में कोई प्लॉट खाली हो तो वो थोड़े दिन में कूड़े का ढेर बन जाता है।
1: वही मैंने कहा ना कि थोड़ी चेतना की कमी है। कुछ नहीं, जिस दिन आप समझ लेंगे कि ये प्लॉट भी मेरा ही है, मेरा कोई रिश्तेदार आएगा तो वो भी यहीं से निकल के जाने वाला है।
0: हम लोग ये भी नहीं सोचते कि वो अगर गंदगी का ढेर अंबार लग रहा है तो वो उसके मच्छर कीड़े बदबू या बीमारियां हम तक पहुंचेंगी।
1: कारण सबसे बड़ा मैंने आपको ये बताया कि जो भी हम कुछ भी करें, वो निर्माल्य की व्यवस्था भी जो है, हम उसे कायदे से कहीं पे भी जमीन में दबा दें या किसी एक सेंट्रल किसी एक जगह पे रख दें और किसी को दे दें कि भाई इसको कोई ऐसी व्यवस्था कर लें। कॉलोनी में रहते हैं तो एक ड्रम कहीं पे एक जगह पे जिसका जो पूजा का सामान है वो इसमें डालते रहे, तो कभी किसी गाड़ी के माध्यम से, कभी किसी रिक्शा वाले को 2-4-5 सौ रुपए देके, या किसी को कहीं अगर चाहें तो कर सकते हैं।
0: कर सकते हैं,
1: बाकी काम कर लेते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। पिकनिक मनाने तो इकट्ठे जा सकते हैं पैसा इकट्ठा करके
0: जी,
1: तो इस तरह के काम क्यों नहीं कर सकते हम सोसाइटी में, कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: रिक्वायरमेंट सिर्फ चेतना की है, बुद्धि की कमी नहीं है
0: जी।
1: जब मैं गंद फेंक रहा होता हूँ मुझे पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, इस बात का ख्याल ना होना कि ये जहां भी जो भी मैं गलत काम कर रहा हूँ ये स्थान भी मुझसे ही संबंधित है, ये भी मेरा ही
0: है। बिल्कुल, अपनेपन का भाव नहीं है, ये अपनत्व का भाव कम है कहीं ना कहीं है। दोस्तों ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 9639012111, और आपको इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, कुछ आपके विचार है तो जरूर शेयर कीजिएगा। सुनते रहिए सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है। अब आप सुनेंगे राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति के ऊपर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

समर्पित है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुभारती आजादी रेडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, भारत कभी विश्व गुरु कहलाता ही नहीं था, बल्कि वो था भी। भारत ने ही विश्व को तक्षशिला नाम से विश्वविद्यालय दिया, नालंदा विश्वविद्यालय दिया। केवल ये ही नहीं, भारत के वनों में स्थापित गुरुकुल विज्ञान और आध्यात्म की महानतम प्रयोगशालाएं बने। वहां से उदित आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक सूत्रों ने मानवीय सभ्यता को गति प्रदान की। आज हम विज्ञान और तकनीक को जिस शिखर पर देख रहे हैं, उसका आधार भारत के ही महान ज्ञानवत और तपोनिष्ठ मनीषियों ने रखा था। यहाँ के ऋषियों ने ही विश्व को एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया।

प्रेम और शांति का भी संदेश भारत ने ही दिया। दूसरी ओर भारत एक समय विश्व की सबसे सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी। आज आप बड़े बड़े नेताओं के उद्बोधन में सुनते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। हम भारत में रहते हैं, लेकिन एक भारत हमारे भीतर भी रहता है। यदि हम उसको जागृत करने में सफल हो जाते हैं तो तय है कि हमारा प्रिय देश विश्व में शीर्ष पर होगा और पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा।

ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। इसका आधार है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक, जिसके रचयिता, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0FM पर वेलकम है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और आ चुका हूं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। और हाँ, यहां पर मैं अकेला ही आपसे बातें नहीं करता, आपकी बातों को भी सुनता हूं, आपके मैसेजेस देखता हूं और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करता हूं। सो आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, कुछ नई नई बातें आपसे मिली होंगी, कुछ नई नई बातें मैं आपकी सुनूंगा और कुछ नई नई रिक्वेस्ट मैं आपकी भी पूरी करूंगा। सो अभी तो हम आए हैं और आपसे यही कहेंगे कि बस जाइए आप कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं, और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है,
2: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो।
1: ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हां, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
4: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है। नई राह है, नई मंजिल है।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और चलिए जी, अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, जो कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वो भी है जो अपने कार्य से अधिक कर सकता है परंतु करता नहीं है। सिंपल सा, सीधा सा और समझने वाला मतलब है। देखिए, एक आलसी इंसान वो होता है जो कुछ भी काम कभी भी नहीं करता। उसका नेचर ही है कि वो काम नहीं करेगा, हर काम में आलस दिखाएगा। लेकिन आलसी एक वो भी है जो अपने काम से ज्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अच्छे नंबर वो ला सकते हैं, अच्छी एजुकेशन वो पा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, और जब पढ़ते नहीं है तो नंबर भी अच्छे नहीं ला पाते, और इसके बाद वो आगे की पढ़ाई भी कोई ऐसी करते हैं जो थोड़ा मतलब आसान हो, जिसके लिए उन्हें कम पढ़ना पड़े। तो अगर आप ऐसे आलसी हैं जो अपने काम से ज्यादा काम कर सकते हैं, तो वो आलस अपने अंदर से निकाल दीजिए और ज्यादा काम कीजिए, और देखिए फिर अपना रिजल्ट कितने आगे आप पहुंच जाएंगे। तो ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आर शे पंकज को, आपके अपने रेडियो स्टेशन पर, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
2: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो।
1: ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकार

0: और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए। यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा

0: है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
2: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
2: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
4: डिग्री तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो पहचान और संस्कार दे वही असली शिक्षा है। मेरठ का गर्व, देश की शान, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां 250 एकड़ के विशाल कैंपस में पलते हैं आपके बड़े सपने। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या ललित कला, यहां के 200 से ज्यादा कोर्सेज आपको बनाते हैं कल का लीडर। शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, यही है सुभारती की पहचान। एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आज विजिट करें subharti.org पर या आए हमारे कैंपस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, NH 58 सुभारतीपुरम मेरठ में।
5: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए, एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने दोस्त पंकज को। अच्छा यार, दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास सभी तरीके की सुविधाएं हैं। उनके पास कार है, उनके पास अपनी बाइक है, अपना घर है और वो समय पर खाना भी खा लेते हैं, उन्हें तीनों वक्त का खाना मिल जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए भी काफी सारी मशक्कत करनी पड़ती है और उनके सर पर जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, और वो घर से कुछ ना कुछ बेचने के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे लोगों को आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर या कहीं चौराहों पर देख सकते हैं जो कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं और आपके पास आकर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर खरीद लो ना, एंड आप उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तो क्या वो करना सही है? जो वो बेच रहे होते हैं उसकी कीमत क्या इतनी होती है कि आप उसे खरीद नहीं सकते? शायद नहीं, इतना ज्यादा महंगा तो वो नहीं होता। उसकी कीमत 10, 15, 20 या 50 भी हो सकती है, और 50 तो शायद मैं ज्यादा ही कह गया, हद से हद 20 रुपए या 10 रुपए तक ही होती है। तो क्या हम वो खरीद नहीं सकते? खरीद सकते हैं ना, तो फिर इग्नोर करके क्यों निकलना? अगर हम उसे खरीद लेंगे तो अगला इंसान जो वहां पर उसे खड़ा होकर बेच रहा है उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके की हेल्प आप कर सकते हैं, प्लीज। यही मेरा मैसेज है यहीं से आज कि इग्नोर करके ना निकला करें, खरीद लिया करें, चाहे एक ही खरीदे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि दो खरीदें, तीन खरीदें या चार खरीदें। आपकी जितनी कैपेबिलिटी हो उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप खरीदें जरूर, चाहे एक खरीदें या दो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, फोर्स नहीं करूंगा आपको, बस कहना था ये, सो कह दिया। अब उम्मीद आपसे यही करूंगा कि आप इस बात को मानेंगे और ट्रैफिक लाइट के आसपास या बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर कोई भी कुछ ऐसा बेच रहा होगा तो आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें, विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कपिल, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका।
1: जय हिंद एंड थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके साथ में जो है इस पॉडकास्ट में बैठा हूं और अपने फैकल्टीज और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अच्छा यहां बता पाऊंगा।
0: सर, सबसे पहले आपके विजन के बारे में एंड आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जो हमारी विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, उसकी कुछ कोर वैल्यूज हैं, जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो सारी भावनाएं, सारी वैल्यूज जो हैं वो दिखती हैं, और बच्चों को इंजीनियरिंग के साथ में हमारी कल्चरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, उनको संस्कार सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी में भविष्य में इंटरमिंगल होना है वो चीज सिखाई जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ में हम तकनीकी जो शिक्षा है उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चे उसको ग्रहण कर और देश के मूल्यवान नागरिक बनकर समर्पित होते हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ में हमारी फैकल्टी भी, हम हर साल उनके लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उन प्रोग्राम्स को करवाने के लिए जो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और जो इंडस्ट्री में उस टाइम पर जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे वो शिक्षकों को उनके ऊपर ट्रेन करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एकेडमिक्स है उसके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई अंतर ना रहे। और देखा जाए तो हमारे पास में अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अधिकतर सभी ब्रांचेस हैं। हम अगर शुरुआत करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो हमारे साथ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी कई सारे कंसंट्रेशंस हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है पहला, दूसरा है बिग डेटा एनालिटिक्स, तीसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कंप्यूटर साइंस के कंसंट्रेशंस हैं। इसके साथ में हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मतलब एविएशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं, हमारे पास डिफेंस में कोर्सेज हैं, हमारे पास मास्टर्स में अधिकतर सारे कंसंट्रेशन हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो मास्टर्स, चाहे कंप्यूटर साइंस में, अधिकतर सभी ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन में हमारे पास में कोर्सेज हैं। तो ये सब चीजें घटित करती हैं एक अच्छी शिक्षा पद्धति को, और जो बच्चे उसको ग्रहण करते हैं और जिस चीज में उनकी रुचि होती है उसी में वो अपने आप को एडमिशन लेकर उस चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी हमने फिलहाल हमारी जो काउंसिल है, टेक्निकल काउंसिल है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उससे हमने AICT आइडिया लैब जो होती है उसके लिए हमने ग्रांट लिया है, हमें AICT ने अप्रूवल दिया है, और उसके ऊपर हमने कई करोड़ रुपए लगा के हमारी एक आइडिया लैब तैयार हुई है, जिसके अंदर सभी मशीनें बिल्कुल नए स्तर की है, बिल्कुल जो मार्केट में ट्रेंडिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड है। बच्चे उस AICT आइडिया लैब में जाकर जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्ड है उनको डेवलप करते हैं। अभी हमने फिलहाल में ही अगर देखा जाए तो हमने एक अन्वेषण इवेंट होता है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करवाती है, उस अन्वेषण के अंदर हमारे बच्चों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ रीजन में हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, और उसके अंदर 30 यूनिवर्सिटीज आई थी, 30 यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों ने कॉम्पीट करके फर्स्ट रैंक लेके आना, वो जो हमारे प्रयोग है, हमारे प्रयास है, चाहे वो AICT आइडिया लैब है या और बच्चों के लिए टीचर्स के लिए जो रिसर्च फैसिलिटीज हमने यहाँ डेवलप की है, उसके अंदर बच्चे जाके टीचर्स जाके जो काम करते हैं उसी का कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन है।
0: सर, डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: जहां तक बात आती है हमारी फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज हमारी इस टाइम पर बड़ी अच्छी है, मैं कहूंगा कि अनपैरेलल्ड मैच है। आप इस पूरी बेल्ट में देखेंगे तो जो शानदार सेट हमारे पास में है फैकल्टीज का, वो शायद ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता हो। अधिकतर सारी फैकल्टीज हमारे पास में वो PhD होल्डर्स हैं, और IIT से ग्रेजुएट हैं, NIT से ग्रेजुएट हैं, वो बच्चों के साथ में जो अच्छी स्किल्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग देती हैं। और जहां तक बात है बच्चों को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, बच्चे जो हमारे साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बच्चे इंजीनियरिंग करता है तो उसके बाद में उसको गेट की तैयारी हम कराते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी निकलती है उसमें बच्चे एलिजिबल होते हैं गेट क्वालिफाई करके। तो वो सब करने के बाद में बच्चा जो है, जब यहाँ पर तैयारी उसको मिल जाती है, बच्चे को कहीं बाहर कोई अलग वर्टिकल उसको तलाशना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि बीटेक करने के बाद में बच्चा जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है उसको फिल करने के लिए वो दिल्ली नोएडा में जाके ट्रेनिंग किया करता था, पर आज की डेट में हमने इंडस्ट्री से पार्टनरशिप की है और उन इंडस्ट्रीज को हम अपने कैंपस पे लेके आए हैं, और वो हमारे कैंपस पर ही बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चा जो वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले बहुत दूर जाया करता था वो आज उसको यहीं पे मिल जाती है, हमारे कैंपस के अंदर वो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई हुई है। हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में एमओयूज किए हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं। टुलिटसन यूनिवर्सिटी के साथ में भी हमारे कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर हमारे बच्चे वहां पर जा सकते हैं अमेरिका और अमेरिका के बच्चे यहां पर आ सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फ्रांस की और जर्मनी की है उनके साथ में भी कुछ एमओयूज किए हैं जहां पर बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में हमारे बच्चे जो है वो भविष्य की तैयारी करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं, नागरिक के साथ में एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनते हैं जो देश की उन्नति में और भागीदारी में एक अच्छे तरीके से सहयोग देते हैं।
0: सर, आज के टाइम में जहां बच्चे ऑनलाइन सीख रहे हैं या एआई की हेल्प से सीख रहे हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जहां तक बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक एडेड एडवांटेज है जो पहले बच्चों को नहीं मिलती थी, है ना, अब मिलना शुरू हुई है। तो इसको बच्चे एडेड एडवांटेज के तौर पर लें, नहीं तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है वो यूट्यूब पे नहीं चल सकता। यूट्यूब पे आप खाली लर्निंग कर सकते हैं, पर अगर आपको जो है टीम वर्क में काम करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको लैब एक्सपोजर लेना है तो आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। आपको और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो जो गैप है, जो टीम वर्क और जो मेंटोरशिप है, जो वो टीचर के सामने बैठ के बच्चा अपनी प्रॉब्लम जब रखता है, टीचर उसके ऊपर 1-to-1 उसकी काउंसलिंग करता है, वो सब चीजें यूनिवर्सिटी में ही, कैंपस में ही मिल सकती है, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब को बच्चा जो है एक एडेड एडवांटेज ले और उससे ज्यादा कुछ ना, उसकी एक फैसिलिटी है।
0: ठीक है सर, अब आगे बढ़ें और बात करें एआई को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
1: एआई से तो मैं ये देख रहा हूं पिछले काफी समय से कि एआई जो है वो अगर ना हो तो आज के समय में आधे लोगों की जॉब चली जाएगी। लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं एआई के ऊपर, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि जो इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो एआई नहीं सीखेंगे, उनके लिए सीखना मजबूरी होगी, नहीं सीखेंगे तो वो शायद कॉम्पीट ना कर पाए अपनी स्किल्स में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किल्स सीख के आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पर नॉर्मल स्किल्स के साथ में किसी इंजीनियर ने एआई की भी हेल्प ली हुई है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 4x बढ़ जाती है, 5x बढ़ जाती है। तो जब 5x वाला एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री के पास में अवेलेबल होगा तो वो नॉर्मल प्रोफेशनल क्यों लेगी? तो एआई सीखना सबकी मजबूरी बनेगी और वो बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि एआई जो काम आप नॉर्मली जो है पूरे दिन में करते हैं, एआई उसको 5 मिनट में आपके लिए फैसिलिटेट कर देता है। तो आपका पूरा दिन बचता है, वो पूरा दिन आपके लिए और वैल्यूएबल चीजें करने के लिए बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं।
0: सर, एम्प्लॉयबिलिटी गैप भी आजकल थोड़ा बढ़ चुका है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी गैप इसलिए है कि बच्चा कॉलेज आता है, आज की डेट में थ्योरी पढ़ता है, एग्जाम पास करता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जाम पास करना है। इंडस्ट्री एग्जाम पास नहीं मांगती है, इंडस्ट्री मांगती है उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसका डिसिप्लिन, उसके अंदर और वैल्यूज जो इंडस्ट्री में चाहिए होती है वो चीज मांगती है। बच्चा सिर्फ पास होना जानता है, वो गैप हटेगा जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, स्किल एनहांसमेंट की बात होगी, तो ये गैप अपने आप हट जाएगा। हम मोर ओवर जो है फोकस करते हैं, जो आमतौर पर जो लोग फोकस करते हैं वो करते थ्योरी के ऊपर। हमारी जो अप्रोच है सुभारती के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इन्हीं सभी सोच के साथ में बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा जो है वो इन्हीं पद्धति के ऊपर दी जाती है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम लैब के अंदर टाइम उसका स्पेंड करवाते हैं, तो जब वो स्किल उसकी डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तो गैप अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सर, कोई नए कोर्सेज जो अभी स्टार्ट हुए हों उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
1: देखिए, हमने कई सारी क्रॉस डिसिप्लिन कोर्सेज को भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जनरेटिव एआई को तो हमने पूरा सारे डिसिप्लिन में हमने डाल दिया है। और आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल में हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, मैकेनिकल प्लस ऑटोमेशन आ जाता है। हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के साथ में हम जो ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्बेडेड सिस्टम के साथ में आईओटी की बात करते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं ये बड़ा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, और हम रेडी हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ।
0: सर, आप बात करें स्टार्टअप्स की या बात करें प्लेसमेंट की, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
1: देखिए, जहां तक बात आती है प्लेसमेंट्स की, मेरा मानना है प्लेसमेंट्स भी जरूरी है, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है और हमारे जो संस्थापक महोदय हैं उनका भी विचार है कि बच्चों को स्किल्ड बनाकर हम बच्चों को नए नए उद्यम जो है वो शुरू करवाएं। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम उनसे स्टार्टअप खुलवाएं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनकी स्किल्स डेवलप करवाकर उनसे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके अच्छे अच्छे कोलेबोरेशन करवाएं। उसी क्रम में हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की स्थापना की, हमने स्टार्टअप सेल की स्थापना की, जो बच्चों को आए दिन ये उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके लिए वो रेडी करते हैं। जहां तक बात आती है प्लेसमेंट की, तो बच्चा जो इन तैयारी से बिछड़ जाता है, मतलब कहें तो वो ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स करता है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ना वो स्टार्टअप के ऊपर कोई लर्निंग करता है, तो मैं समझूंगा उस बच्चे को तो कम से कम शुरुआत में एक दो साल नौकरी करनी चाहिए। नौकरी का क्या एनवायरमेंट होता है, अपने अपने कलीग्स को कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, फिर वो सब चीजें जो हमारे यूनिवर्सिटीज में उसको फ्री में मिल रही है वो प्लेसमेंट में जाके कंपनीज में वो चीज जब तक नहीं लेगा, जब तक वो एक सफल उद्यमी नहीं बन सकता, एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो प्लेसमेंट उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमारे यहाँ पर ये स्किल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो स्टार्टअप तो बहुत अच्छा है।
0: सर, आप बात करना चाहेंगे आपकी लीडर फिलोसफी के बारे में।
1: देखिए, मैं सबसे पहले मैं विश्वास करता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। जो आपकी दिशा है वो महत्व रखती है, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं वो चीज सेकेंडरी है। अगर आपने गलत दिशा चूज कर ली और उस पर स्पीड से भागे जा रहे हैं तो वो दिशा आपको गलत गोल की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को, बच्चों को जो मार्केट में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में एआई का ट्रेंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मार्केट में है, और कुछ नहीं तो क्या क्या चीज मार्केट में चाहिए, बच्चे उस पर जाएं। और इंजीनियरिंग में कैसे सक्सेसफुल बना जाता है एक करियर के लिए, बच्चे को क्या क्या तैयारी करनी होती है, कम से कम वहां से सीख ले। हम तो सिखा ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप सेल में ये सब चीजें सिखाई जाती है, रिसर्च का एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर है। उनसे अलग अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। उस मेहनत के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको अपने अंदर इम्बाइव करनी होगी, और थ्रू आउट लाइफ ये दोनों चीजें तो आपके अंदर रहनी ही चाहिए, अगर आपको आपकी दिशा और दशा दोनों सही है तो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कमाल की जानकारी देने के लिए। एंड अब आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए।
1: देखिए, लाइफ में अगर मैं कहूंगा कि इंजीनियरिंग में भी कोई एक छोटा सा कोई शॉर्टकट से कोई आप जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। सक्सेस लेने के लिए आपको डिसिप्लिन होना, अपनी कोर वैल्यूज को कंसिस्टेंटली अपने अंदर मेंटेन करना, जो आपकी अच्छी वैल्यूज है उनके साथ में, और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट में डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ में अपने काम पर फोकस करना। अगर नौकरी मिलना आपका टारगेट है तो आप गलत दिशा में हैं। नौकरी लेना बहुत आसान है, पर नौकरी पर बने रहना उसके लिए आपको ताउम्र आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, आपको स्किल एनहांसमेंट करने होंगे, और वो जरूरी भी है। तो मेरा यही मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए कि अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। आने वाले 5 साल में एक पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है एआई की मदद से, तो क्या हमारी पीढ़ी उसके लिए तैयार है? उसके लिए तैयार होना है तो हमें अपनी सोच को, अपने कार्यस्थल को, अपने पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर ढालना होगा। जो उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियां हैं उसको हमें इम्बाइब करना होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड अभी जो श्रोता हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बाकी फिलहाल जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और जी फुल बिंदास गिरी के साथ आपसे बातें शाते यहां पर मैं कर रहा हूं। अच्छा, आपसे मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप अपना कोई फेवरेट ट्रैक सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होता है हमारे सोशल हैंडल्स पर। वैसे अभी सोशल हैंडल्स मैं देख रहा था हमारे रेडियो के, तो मुझे वहां पर मैसेज मिला पराग का, जो कह रहे हैं कि सर मुझे फिर और क्या चाहिए सॉन्ग सुनना है जरा हटके जरा बचके मूवी से। तो चलिए पराग के रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और प्ले करते हैं इनका रिक्वेस्ट किया हुआ ये गाना फिर और क्या चाहिए। एंड पराग, एंजॉय दिस गाना, एंजॉय दिस ट्रैक।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल और मां सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल और मां सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहां पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहां पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्ह हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो

0: या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
0: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
1: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल 12th करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
0: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
1: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
0: जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारे लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं, IITs, NITs और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं। वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
1: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
0: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए। वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
1: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी के गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसकी हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जैन देव रिवन, माई नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करेंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस. आई हैव टेकन माई एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माई रिसर्च एट AIU एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड माई बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU. केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज. इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस. दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर. The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical-based startups, and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind, everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है. एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माई करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है. यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है. करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है. यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है जिसमें से एक था मदर डेयरी विच इज माई ड्रीम कंपनी. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ एज अ फूड एनालिस्ट ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ फॉर अ बेटर इंडिया. ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जय हिंद जय भारत.
5: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ.
6: जय हिंद एवरीवन. मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस.
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है. इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं.
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस. इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप. हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को. और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए. थैंक यू सो मच.
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना. और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं. मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं. थैंक यू सो मच.
1: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए. आप इस साल 12th कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर 12th होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं. बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी. चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे.
0: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी.
7: तेरी याद आती है रात भर, तेरा असर इस कदर है कि फिरता हूँ दर बदर.

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज, और अभी वही यहां अपने स्टूडियो में हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। और चलिए अभी आपसे करते हैं हमारा आज का फिल्मी क्विज। आज का फिल्मी क्विज हमेशा की तरह आसान है और कंडीशन के साथ है। बस कंडीशन ये होती है कि आपको जवाब सबसे पहले देना होता है और करेक्ट देना होता है। ऐसा आप जब करते हैं तो आपको मिलता है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो अभी के क्विज के लिए तैयार हैं आप? चलिए क्विज करते हैं आपसे। आज के क्विज में आपको मुझे बताना है जो सिंघम मूवी है, अजय देवगन जिसमें लीड में है, इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है काजल अग्रवाल, उनका इस मूवी में जो कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है। इतना सा बस आपको मुझे बताना है। कंडीशन आपको मैंने बता दी है और अब आपको ये बताता हूँ जवाब आपको मुझे भेजना कहाँ पर है। जवाब आप मुझे भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। इंस्टा पर आप जा सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के, या फेसबुक यानी कि मेटा पर भी आप जा सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के, और यहां पर जाकर अपना जवाब भेज सकते हैं। जवाब सबसे पहले आया और करेक्ट आया तो आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं ताकि आप भूले ना। तो फिलहाल जल्दी कीजिए और अपना जवाब हमें भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा अपकमिंग गाने के साथ।

0: रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं।
1: स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हाँ तो जी, जवाब तो आपके मुझे मिल गए हैं और अब मुझे चुनना है कि सबसे पहले और करेक्ट जवाब किसका आया है। ओ ओ, आपका अगेन वेलकम करना तो भूल गया। हाँ तो जी, वेलकम बैक है जी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना पेंदा सार शे पंकज। अब ठीक है ना, वेलकम बैक हो गया। अब आगे बात करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आपसे मैंने किया था एक क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था बॉलीवुड मूवी जो है सिंघम, जिस मूवी के लीड एक्टर हैं अजय देवगन, इस मूवी की लीड एक्ट्रेस का नाम भी आपको पता है, जिनका नाम है काजल अग्रवाल, उनका जो कैरेक्टर है इस मूवी में, उनके कैरेक्टर का क्या नाम होता है, इतना सा बस आपको मुझे बताना था। तो जवाब हमारे पास कई सारे आए हुए हैं, अभी मैंने शुरू में ही बता दिया था, लेकिन उसमें से अब ये देखना था कि सबसे पहले और करेक्ट जवाब किसका आया है। तो हमें जो सबसे पहले और करेक्ट जवाब मिला है, ये जवाब हमें मिला है सुचित्रा जी का। इन्होंने मुझे बताया है कि सिंघम मूवी की जो लीड एक्ट्रेस हैं काजल अग्रवाल, उनका इस मूवी में जो कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर का नाम होता है काव्या। भाई बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, और आपने जवाब भी हमें सबसे पहले भेजा है, इसलिए आपको मिल रहा है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकती हैं, हमारे रेडियो आ सकती हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। फिलहाल अभी जाइए कहीं मत, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूरोनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज का ये खास पॉडकास्ट उनके लिए है जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास अतिथि सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम। मैम स्वागत है आपका।
1: पंकज जी थैंक यू और धन्यवाद, आपने मुझे आज इस अवसर पर बुलाया।
0: मैम हमारे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में चल रहे कोर्सेज के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे।
1: सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी विधि के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है और उत्तर भारत में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो BA LLB LLM LLM एग्जीक्यूटिव PG डिप्लोमा PhD और LLD प्रोग्राम को देता है।
0: मैम अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे, कोई बच्चा आकर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है?
1: अगर हम UG कोर्स की बात करें दैट इज BA LLB, उसमें 10+2 आपका होना चाहिए और 45% एग्रीगेट होता है। उसमें हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है संस्था का, तो उसके माध्यम से वो प्रवेश ले सकता है BA LLB में। इसके अलावा PG डिप्लोमा का हमारा कोर्स है। PG डिप्लोमा हम लोग ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, पेटेंट, IPR इन विषयों पे कराते हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसमें प्रवेश ले सकता है और इस विषय पर अपने जो भी आप ह्यूमन राइट्स हैं, पेटेंट हैं, उस पर आप अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।
0: मैम कितने टाइम ड्यूरेशन के सभी कोर्सेज हैं, UG के भी और PG के भी?
1: हमारा जो BA LLB का कोर्स है ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जो हमारा PG डिप्लोमा का कोर्स है वो 1 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे संस्थान में मास्टर्स में LLM है। LLM जो 2 ईयर्स कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है और उसमें हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं। और जो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन है हमारे संस्थान में, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड द कॉर्पोरेट लॉ। इन 4 स्पेशलाइजेशन में विद्यार्थी जो है अपने इंटरेस्ट से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकता है और हम लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री

0: मास्टर्स में देते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास्टर्स में LLM एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। दोज हु आर प्रोफेशनल, जो लोग जॉब में हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा LLM एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम है। ये 3 वर्षीय प्रोग्राम है।
1: मैम, आपने इन तमाम कोर्सेज के बारे में बताया, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कॉलरशिप पर एडमिशन खोजते हैं, तो क्या हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर भी बेस्ड?
0: हमारा संस्थान डिफरेंट स्कॉलरशिप देता है, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप देता है। उसमें एक क्राइटेरिया बना है, 9200 पे आपका UG अगर आप करना चाहते हैं, BLLB करना चाहते हैं, तो वहाँ पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे ही वो सारी ट्यूशन फीस पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा मास्टर्स में भी यही व्यवस्था है, और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 9200% का एक पूरा बॉक्सेस बने हुए 9200 और 80.9%, तो वहां पर बच्चों को सुविधा स्कॉलरशिप की अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप के अलावा भी हमारे यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जो एलुमिनाई है उनके लिए स्कॉलरशिप है, आर्मी पर्सनल के लिए स्कॉलरशिप है, साथ ही साथ जो मार्टियर से उनके डिपेंडेंट है उनके लिए भी हमारी संस्था जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
1: मैम, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो किस तरह का स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है?
0: पंकज जी, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो संस्था है, हमारा जो सरदार पटेल सुभाती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, वो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, और हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। और हमारा संस्थान कंटिन्यूस बच्चों को जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है उसको फॉलो करते हुए उनको मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराता है, उनको क्लाइंट काउंसलिंग सिखाता है, जजमेंट राइटिंग कराता है, कोर्ट विजिट, जेल विजिट, लोक अदालत विजिट, ये सब कराता है। इसके साथ ही साथ हमारे संस्था में जो एजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक हमारा फ्री लीगल एड क्लिनिक है, जहां पर बच्चे जो है क्लिनिकल सारे एस्पेक्ट सीखते हैं, और फ्री लीगल एजुकेशन, वहां फ्री लीगल एड उनको प्रोवाइड कराई जाती है। दोज हु आर रिक्वायर्ड द फ्री लीगल एड, जिनको विधिक सहायता की आवश्यकता होती है, वो हमारे यहाँ आकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करते हैं, और ये 24/7 हमारे यहाँ चलता है संस्थान में। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो फील्ड में जाके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख सकते हैं, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले, प्रोफेशनलिज्म में एंटर करने से पहले, वो सारी विधा सीख जाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे डील करना होगा।
1: मैम, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? जो भी कोर्सेज आपने बताया यूजी के हैं या पीजी के हैं, तो आगे करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं?
0: पंकज जी, विधि के क्षेत्र में जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। आप BLLB का कोर्स करने के बाद आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप डिफरेंट लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी लॉ फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो आप जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विधि के क्षेत्र जो ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट में विधिक जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर BLLB के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है, और आप कुछ भी, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, आजकल फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां पर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा स्कोप है। साथ ही साथ अगर हम मास्टर्स की बात करें तो बच्चा BLLB करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब मास्टर्स करता है, LLM करता है, तो LLM करने के बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो एकेडमिक्स में जा सकता है, वो UGC NAT क्लियर कर सकता है, PhD कर सकता है, रिसर्च को ऑप्ट कर सकता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो LLM फर्स्ट ईयर करने के बाद, मास्टर्स का पहला साल करने के बाद ही UGC NAT क्लियर कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर इन लेटर और स्पिट हम फॉलो करते हैं कि 75% अटेंडेंस है, तो वो उसको बच्चा करता है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आउटकम हमें मिलता है।
1: मैं, वैसे तो हम लगभग सभी बातें इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जिन भी बच्चों तक ये हमारा पॉडकास्ट पहुंच रहा है और आगे जुडिशरी के क्षेत्र में या आगे वकालत के क्षेत्र में अपना करियर जो बच्चे देखते हैं इस वक्त, हमें सुन रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ी सी क्वेरी अभी बच जाती है तो क्या रास्ता है, किस तरीके से वो कॉलेज जा सकते हैं, एड्रेस क्या है?
0: हमारा जो प्रमुख संस्थान है ये NH 58 पर एस्टैब्लिश है, आप कभी भी आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आकर हमसे क्वेरी कर सकते हैं।
1: तो अभी अभी आपने सुना सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम को, और उम्मीद है तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड अब आपको ये चुनना है कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे क्या करना है, अगर आप लॉ के क्षेत्र में आना चाहते हैं और PG आपको करना है तो आपको क्या करना है, वो आप समझ सकते हैं। बाकी अभी हम सुनने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सरदार पटेल सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें।
2: जय हिंद, मेरा नाम सृष्टि सिरोही है और मैं BLLB थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपके साथ सुभारती से जुड़े अनुभव साझा करूंगी। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो लगा 12th के बाद क्लास टीचर ने जो सपोर्ट किया, ऐसा सपोर्ट कहाँ ही मिलेगा किसी कॉलेज में। पर यहाँ का मेंटर मेंटी सिस्टम एक स्ट्रेंथ बना और साथ ही ऐसी गाइडेंस दी कि जो आज तक इतना सपोर्ट करती है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ उनसे संपर्क साध लिया जाए तो वे

0: हर मुश्किल हल कर देते हैं। दूसरा, यहाँ की लाइब्रेरी जो हर प्रकार के सब्सक्रिप्शन और साथ ही जर्नल्स और न्यूज़पेपर और छोटी से बड़ी बुक्स हमें प्रोवाइड करती हैं। सुभारती के अगर ब्लॉक्स में घूमो या कैंपस को विजिट करो तो देखोगे कर्नल लक्ष्मी सहगल से लेकर झलकारी देवी, जिनके नाम इतिहास में छुपे रह गए, जो सुभारती यूनिवर्सिटी ने अपने आंगन में उन्हें जगा दी और साथ ही उनका नाम अमर कर दिया। सुभारती यूनिवर्सिटी के चार क्लब, कल्चरल, लिटरेरी, इनोवेशन और स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेस्ट से जुड़ी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ ही सबसे अच्छा, सुभारती के टीचर्स जो हमें हमारे फ्रेंड्स और साथ ही गुरु दोनों प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी, सुभारती सिर्फ करियर ही नहीं बनाता, यह एक चरित्र का निर्माण करता है। धन्यवाद।
1: जय हिंद। मैं ओम ठाकुर, विधि संकाय के चतुर्वर्ष का छात्र। जब सुभारती के अंदर मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ तो मुझे अपने 5 साल के जर्नी का वो पहला साल याद आता है। घर से इतनी दूर, मन में हजारों शंकाएं, परंतु यहाँ के माहौल ने उन सभी शंकाओं को क्षण भर में दूर कर दिया। बात अगर एकेडमिक्स की करूँ तो मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी में हाथ जरा तंग थी। ना केवल मैं, मेरे घरवाले भी परेशान थे कि आखिर कैसे मैं इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। मगर कॉलेज और टीचर्स का जो सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे अन्य बच्चों को मिला, मैं आज ये कह सकता हूँ कि अब लैंग्वेज हमारे एकेडमिक्स में बैरियर नहीं रहा। साथ ही मूड कोट एक्सरसाइज, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समय समय पर होते रहते हैं, जिनकी मदद से हम लॉ को ना केवल किताबों में बल्कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट्स, डिबेट्स और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से सुभारती अवसरों का भंडार है। और यही कारण है कि मेरे जैसा एक छात्र जिसने 12वीं तक कभी माइक भी नहीं पकड़ी थी, वह आज राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ना केवल प्रतिभाग कर रहा है बल्कि मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती भी है। और मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो अलग अलग मंचों पर देश और सुभारती का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं, अ जर्नी विच वेल बिगन इज ऑलमोस्ट हाफ डन। जिस दिन मैंने सुभारती को चुना, विधि क्षेत्र के इस जर्नी का वह शुरुआत था जिसने मेरे सफर को आधा तय कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता का मूल मंत्र जो मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा, वो बचे खुचे मुसीबतों से भी मुझे विजय प्राप्त करवाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्राउड टू बी सुभारतीयन।
2: तो अभी अभी आपने उन छात्रों को सुना जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। बाकी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की। चलते चलते एक मैसेज हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिन तक हमारा ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है।
3: मैं अब एक केवल यही वाक्य कहना चाहूंगी बच्चों से कि आप अपने करियर पे फोकस करें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे अपने जो भी आपने क्षेत्र चुना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अपना टारगेट सेट करें एंड हिट द टारगेट, तभी आप जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये बात आपने माइंड में बिठा लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य आपको सेवाएं देना है। सेवाएं किसको देना है? राष्ट्र को देना है। बिकॉज हम किस पर बिलीव करते हैं? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। विद दीज वर्ड, जय हिंद, जय भारत।
2: बिल्कुल बात सही है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे किसी नए अतिथि के साथ। तब तक मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ हमेशा की तरह, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं 2-व्हीलर से, प्लीज हेलमेट लगाया कीजिए, और 4-व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के साथ। जय हिंद, जय भारत।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now, 9639010313.

0: जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास अतिथि। आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, आप डीन प्रोफेसर हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। सर स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद पंकज जी, जय हिंद।
0: सर, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में आज बातें करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे कॉलेज के बारे में, किस प्रकार के कोर्सेज हम यहाँ पर चला रहे हैं।
1: जय हिंद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के बारे में बता पाऊंगा। देखिए, केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ का एक अहम कॉलेज है, और जिसमें कि हम विज्ञान से जुड़े सभी कोर्सेज को आमंत्रित करते हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेज के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, और फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज हैं।
0: सर, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए समझना चाहेंगे, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज कौन है, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं।
1: जी जी, देखिए, आफ्टर ट्वेल्थ वाले कोर्सेज हमारे जो हैं वो सभी ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है। ये सभी कोर्सेज कोई भी विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद कर सकता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना जरूरी है, जबकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स के साथ विद्यार्थी जो उत्तीर्ण करते हैं वो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से संबंधित जो कोर्सेज हैं उसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कोई भी विद्यार्थी, पीसीएम या पीसीबी वाला विद्यार्थी उसमें प्रवेश ले सकता है।
0: अब थोड़ा सर आगे चलते हैं और जानते हैं, जैसे ट्वेल्थ के बाद तो आपने ये सभी कोर्सेज बताए, अब इसमें आगे अगर कोई मास्टर में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे क्या मतलब क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे ही कॉलेज में पूर्ण व्यवस्था है। सभी विभाग जितने भी हैं हमारे यहाँ पर वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, यानी कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमसीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, सभी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं या कहीं के विद्यार्थी हैं उसके लिए भी जो न्यूनतम अर्हता है वो समान है, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उसने यदि उत्तीर्ण किया है तो हमारे यहाँ पे वो सभी जितने भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें वो प्रवेश लेने के लिए अर्हे हैं।
0: सर, अभी जैसे हमने आफ्टर ट्वेल्थ की भी समझ ली और आफ्टर ग्रेजुएशन की ये समझ लिए हैं कोर्सेज, अब एक बात ये है, जैसे ये कोर्सेज कर लेता है बच्चा, चाहे वो बैचलर में कर ले या मास्टर्स में कर ले, करियर के ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या हो जाते हैं?
1: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आजकल कोई भी विद्यार्थी हो या माता पिता हो, सबका मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके विद्यार्थी को एक अच्छी जॉब मिल सके। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, और हमारा जो फोकस है वो केवल किताबी ज्ञान देने पर नहीं है, उसके अलावा हमने अपने जो कुरिकुलम है उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और जो आपके कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। उससे क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो स्किल बेस्ड नॉलेज है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को अच्छी जॉब के लिए तैयार करते हैं और वो बहुत आसानी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर, अब एक सवाल ये भी आता है कि तमाम कॉलेजेस हैं लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं 12वीं पास करके आने वाले हों या ग्रेजुएट करके आने वाले हों, वो केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस क्यों चुने?
1: देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा कुरिकुलम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर आधारित है। हमारा पूरा फोकस बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करना है ताकि जब वो अपनी डिग्री लेकर समाज में उतरे तो वो अपने आप को साबित कर सके। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होने की वजह से, उनके पास स्किल्स होने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ दूसरे कॉलेज से जो विद्यार्थी आते हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं।
0: सर, अब जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं और इस साल ट्वेल्थ करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, वो कॉलेज जाना चाहें तो क्या एड्रेस है विजिट के लिए, एक बार बता दीजिए।
1: देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का जो भी विजिट करना चाहें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद वहीं पर आप किसी से पूछेंगे फैकल्टी ऑफ साइंस साइंस कॉलेज, तो हमारा एक बहुत सुंदर सा कॉलेज उनको दिखाई देगा। वहां पे जाइए रिसेप्शन पे, हम उनको अपना पूरा कॉलेज के बारे में वहां पे बताएंगे।
0: सर, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या विशेषता है जो किसी भी छात्र या छात्रा को अट्रैक्ट करेगी यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए?
1: जी जी पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, कॉलेज के अंदर भी एक प्लेसमेंट सेल है और विश्वविद्यालय की एक प्लेसमेंट सेल है। तो हम जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो प्रथम वर्ष से ही उसको पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के द्वारा, इंग्लिश कम्युनिटी क्लासेस के द्वारा उसको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो अपने आप को 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर सके। दूसरा मेरा कहना जो है, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। हमारी जो लैबोरेटरीज है, मैं सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया एक बार आएं और हमारी लैबोरेटरीज देखें। हमारे पास जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो सभी हमारी लैबोरेटरीज में हैं और हमारे विद्यार्थी उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम जो एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं आईआईटीज एनआईटीज और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि वॉट इंडस्ट्री वॉन्ट, कि आज इंडस्ट्री क्या चाह रही है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों की स्किल्स को तैयार करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की तैयारी केरल वर्मा सुभारती कॉलेज के अलावा कोई दूसरा कॉलेज नहीं कर रहा होगा।
0: सर, एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा?
1: देखिए, एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन हो जाता है।
0: तो अभी आपने सुना केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन सर को। उन्होंने तमाम कोर्सेज के बारे में बताया जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में। अब उन्हें सुनते हैं, उन छात्र छात्राओं को जो यहां पर कोर्सेज कर रहे हैं, वो आपको अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए उन्हें सुनते हैं।
2: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वैष्णवी और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं और मैंने 2024 में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लिया था एंड मैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर हूं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड रियल रिसर्च की जरूरत पड़ती है एंड इस कॉलेज ने मुझे रियल रिसर्च का एक्सपोजर प्रोवाइड करा एंड फैकल्टी की गाइडेंस की हेल्प से मैंने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी काम किया है एंड उसके साथ साथ उनके गाइडेंस एंड उनके सपोर्ट से एंड उनकी हेल्प से मैंने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी, जिसके हेल्प से मैंने एक बायोमेडिकल डिवाइस पे भी काम किया जिसको मैंने ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी करा है एट AIU। इस कॉलेज ने मुझे लैब स्किल्स एंड रियल एक्सपोजर एंड उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग एंड बहुत गाइडेंस एंड कॉन्स्टेंट मेंटर सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी से जैसे डायनेमिक फील्ड में। एंड मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि मैंने बेस्ट कॉलेज चूज करा है एंड आपको भी ये कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर चाहिए, आपको बढ़िया लैब्स चाहिए एंड आपको रियल रिसर्च पे काम करना है एंड उसको नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू।
3: जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कुणाल चौधरी एंड आई एम करंटली अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव टेकन माय एडमिशन इन 2024 एंड आई हैव प्रेजेंटेड माय रिसर्च एट AIU एंड आल्सो प्रेजेंटेड माय बायोमेडिकल बेस्ड स्टार्टअप एट AIU। केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस इज अ वेरी गुड कॉलेज, इट प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द फैकल्टी हेयर आर वेल एक्सपीरियंस, दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट आउट देयर। The future outcome from this course can be academia, research, healthcare startups, medical-based startups and biotechnology. Thank you. Jai Hind.
4: Jai Hind everyone. I am Asna Suhail, currently pursuing BSc Microbiology from Keral Verma Subharti College of Science. The first time I looked into the microscope, I was fascinated by its beauty. कोई ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, वो मैग्नीफाई होकर कितना खूबसूरत लगता है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू परस्यू माइक्रोबायोलॉजी एज माय करियर एंड टू अकम्प्लिश दिस ड्रीम आई चोज सुभारती कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती बल्कि प्रैक्टिकल्स पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ की वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट That is role of enzymes in food and feed industry, जो मेरे आगे के करियर से भी रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पर भी ले जाया जाता है, जिसमें से एक था मदर डेयरी, which is my dream company. आगे जाकर मैं फूड इंडस्ट्रीज में काम करना चाहती हूँ as a food analyst. ताकि मैं फूड सेफ्टी इंश्योर कर सकूं फॉर अ बेटर इंडिया। ओवरऑल सुभारती कॉलेज मेरे फ्यूचर प्लान्स को शेप करने में मेरी हेल्प कर रहा है एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जय हिंद, जय भारत।
5: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम जानवी है और मैं बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हमारे कॉलेज केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस की फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ।
6: जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फॉरेंसिक साइंस में एट केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस।
5: हमारे यहाँ नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें इक्वली मिलती है। इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं पढ़ते हैं बट हम उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं।
6: जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग लैबोरेटरीज में ये जानते हैं कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सॉलिड एविडेंसेस। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी भी करते हैं, फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ साथ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं, कैसे हम फोर्ज्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ऑल्टर्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और ऑब्लिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टडी करते हैं थ्रू यूवी लाइट, आईआर लाइट एंड माइक्रोस्कोप। हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ये सब हम अपनी लैबोरेटरीज में सीखते हैं और सारे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिससे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आए और हमारी लैब विजिट करें और देखें कि यहाँ पे कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं चीजें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मुझे लगता है कि फॉरेंसिक साइंस सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच को सामने लाना और जस्टिस को सपोर्ट करना, और हमारे टीचर्स हमें इसी डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मैं अपने कॉलेज के लिए और अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें इतने अच्छे से हमारे करियर के लिए और हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
0: तो अभी आपने सभी स्टूडेंट्स को सुना, सबने अपने अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ साझा किए, और आप भी आइए केरल वर्मा सुभारती कॉलेज ऑफ साइंस में एडमिशन लीजिए। आप इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं तो उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ होंगे, या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आफ्टर ग्रेजुएशन के कोर्स आप यहां पर आकर कर सकते हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने तमाम कोर्सेज की जानकारी आपने हमें दी। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे हम।
1: मेरा बस यही संदेश है सभी विद्यार्थियों को कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: Chernexus.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: पढ़ाई तो सब जगह होती है, पर एक्सीलेंस का होना भी तो जरूरी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी इज द रोड टू एक्सीलेंस विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद अ सलूब्रियस एनवायरनमेंट, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट फैकल्टी,
1: 18 कॉलेजेस एंड 220 प्लस प्रोग्राम्स। विजिट www.subharti.org।

0: जय हिंद। कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी मेरठ,
1: अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर बोर्न टू सर्व द नेशन।
0: वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू यंग एस्पिरेंट्स हु एम टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सर्व द मदरलैंड।
1: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी, जहां कराई जाती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए कली ट्रेनिंग। रिटन एग्जाम्स जैसे NDA, CDS और SSB इंटरव्यूज को भी करें एक बार में क्लियर विद सुभारती डिफेंस एकेडमी।
0: कैप्टन अमरीक सिंह सुभारती डिफेंस एकेडमी उनके लिए जो नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा करना चाहते हैं।
1: तो आज ही ज्वाइन करें। फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉन्टेक्ट 9045954341 एंड 9068899913, और यू कैन ऑल्सो विजिट www.subhatidefense.com।

साथियों, आज वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच हमारा एक छोटा सा कदम देश के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आइए हम सब मिलकर आज ही से ये संकल्प लें। पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दें। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें। विदेशी वस्तुओं की जगह गर्व से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अपनाएं। आगामी गर्मी की छुट्टियों में विदेश यात्रा से बचें। हमारे खूबसूरत भारत की सैर करें। याद रखिए, हमारे छोटे छोटे बदलाव ही देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। धन्यवाद। सौजन्य से आजाद, हिंद रेडियो 90.0 FM।

स्वाभाविक है, कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

के बाद हमारा जीवन आरंभ होता है और ऐसे समय पर कवि ने एक चेतावनी दी है, एक महान शिक्षा दी, इसकी ओर ध्यान दें।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं